मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज दिन है बुधवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 49 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहक के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: 401 दशमलव 6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर में यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी 2 दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए अब चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज खरीफ सब्जियों की उन्नत खेती विषय पर जानकारी दे रही हैं कौशल कुमार नीरज और आपसे इस विषय पर भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं उद्यान निदेशालय उत्तर प्रदेश से उप निदेशक उद्यान कौशल कुमार नीरज साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। नीरज साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ में सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई, तो क्या सलाह है आपकी?
3: किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। खरीफ में जो प्रमुख सब्जियां उगाई जाती हैं वो है खीरा, लौकी, करेला, तोरी और सतपुतिया, चिचिंडा, कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा टमाटर, मिर्च, भिंडी और बैगन।
2: इनकी उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो अच्छी पैदावार देंगी?
3: इसमें खीरा की अगर खेती किसान भाई करना चाहते हैं तो शीतल वैरायटी है और स्वर्ण अगेती, पूसा उदय और करेला जैसे उदाहरण के तौर पे पूसा दो मौसमी है, IIBR से काशी उर्वशी है, पूसा विशेष है, पंत करेला है, प्रिया है। अगर किसान भाई लौकी की खेती करना चाहते हैं तो काशी गंगा, पूसा नवीन, पंजाब उमल, आजाद नूतन। कद्दू की खेती किसान भाई करना चाहते हैं तो पूसा विश्वास, नरेंद्र अमृत, काशी हरित है
2: जी।
3: टमाटर की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं IIBR नारस से निकली हुई 2-3 प्रजातियां बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी की हैं, काशी विशेष है, काशी अमृत है, काशी अनुपम है
2: जी।
3: इसके अलावा पूसा सदाबहार, पंत बहार, अर्का विकास और एक बहुत अच्छी वैरायटी अविनाश 2
2: जी,
3: ये भी बहुत किसान भाई अधिक उत्पादन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सब वैरायटीज का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। और भिंडी की खेती अगर करना चाहते हैं किसान भाई तो पर्वनी क्रांति,
2: भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की भी कई वैरायटीज
3: हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रजातियों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते।
2: तो

0: जो भी खरीफ की सब्जियां हैं, चाहे कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, भिंडी है, टमाटर है, मिर्च है, बैगन है या अगेती फूलगोभी, इनकी पौध कैसे तैयार करें या सीधी बुआई करें, जहां रोपाई करनी है वहां तो नर्सरी प्रबंधन करना होगा।
1: स्वस्थ पौध उत्पादन एक सबसे बड़ा सब्जी उत्पादन के लिए आवश्यक अंग है। इसके लिए लो टनल पॉली हाउस में पौध तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा उद्यान विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में हाईटेक नर्सरीज की स्थापना कराई जा रही है इस उद्देश्य से,
0: और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
1: जैसे कन्नौज है, बस्ती है, वहां से भी प्राप्त करके किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। तो एक तो देखिए समय से पहले भी मिल जाती है, गुणवत्ता युक्त पौध मिलती है और रोग रहित पौध मिलती है, क्वालिटी पौध मिलती है, तो इसका लाभ किसान भाई ले सकते हैं और वहां जाकर के सीख भी सकते हैं कि कैसे हम पौध उत्पादन करें और सब्जी की खेती को लाभकारी बना सकें।
0: अगर किसान भाई बहन अपने खेत पर लोटन एंड पाली हाउस में या पोल्ट्री में करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सलाह है?
1: जो जनपद आच्छादित थे यूपी डास में, उसमें एक डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से लो टनल पॉली हाउस जैसे मच्छरदानी से उसको ढकते थे।
0: हाँ।
1: और 1.25 मीटर चौड़ाई होती थी, और अभी भी बहुत जगह किसान इसको प्रयोग कर रहे हैं जो जानकार हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है कि हम रोग मुक्त स्वस्थ पौध उत्पादन कर सकें सब्जियों का, और इसमें आपको बहुत ही स्वस्थ पौध और समय से पहले भी पौध प्राप्त हो जाती है, जिससे अच्छा मूल्य प्राप्त होता है किसान भाइयों।
0: नीरज साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में सब्जी उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके उद्यान निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 9412463510, 9412463510, 9412463510।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ में सब्जी उत्पादन के बारे में?
1: पानी की बहुतायत होने से खरीफ में कई बार फसल खराब हो जाती है, तो कद्दू वर्गीय सब्जियां जो होती हैं उनको मचान पे लगाने का प्रयास करें कि मचान में एंगल आयरन पे भी लग सकता है, बांस वांस से भी उसको लगा लेते हैं,
0: स्ट्रक्चर ढांचा तैयार
1: कर लेते हैं, उस पे चढ़ा देते हैं, बेल चढ़ जाती है, तो एक गुणवत्ता युक्त उत्पादन उनका कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्राप्त होता है। और मेड़ और कूड़ बीज का प्रयोग करें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, अच्छी प्रजातियों का प्रयोग करें, और पौधे से पौधे और उसकी लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें। हर वैरायटी का, हर फसल का निर्धारित है, तो एक किसान भाई अपने क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयोग भी कर रहे हैं।
0: कौशल कुमार, नीरज साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में सब्जी उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ सब्जियों की उन्नत खेती, इस विषय पर खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत आज जानकारी दे रहे थे कौशल कुमार रीनर्ज, और आपसे इस विषय पर भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का सुविचार परिवर्तन।
3: किसी वस्तु, स्थिति, गुण या अवस्था का बदलाव, यह परिवर्तन कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, यथा प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन या वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन। इस प्रकार परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य अंग है, क्योंकि हर वस्तु समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतया परिवर्तन दो प्रकार का होता है, स्थूल परिवर्तन और सूक्ष्म परिवर्तन। स्थूल परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यथा पेड़ का बढ़ना, मौसम का बदलना, समाज के नियमों में बदलाव इत्यादि। स्थूल परिवर्तन के कारक सूक्ष्म परिवर्तन हैं, यथा मनोदशाओं का परिवर्तन। हमारे विचार, मनोदशाएं परिस्थिति जन्य होती हैं, प्रतिक्रिया जन्य भी होती हैं। जब साधक आत्मचिंतन में लीन हो जाता है तो उसके मन व हृदय में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि उनका प्रकाश न तो वाणी से होता है और न ही क्रियाकलापों से होता है। वे क्षणिक मनोविकार के रूप में आते हैं और

0: कुछ समय पश्चात विलीन हो जाते हैं। ये परिवर्तन अनुभवगम्य होते हैं। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों में ज्ञान पिपासा लेकर जाते हैं और वहाँ हमारी पिपासा सम्यक रूप से शांत नहीं होती है, तो हम अंतर मन में आहत होते हैं और हमारे अंदर प्रतिक्रिया स्वरूप एक वैचारिक परिवर्तन होता है। आवश्यक नहीं है कि वह ग्रंथि का रूप ले ले, समय के साथ अपना सामंजस्य बनाकर वह परिवर्तन छीण से छीणतर होते हुए लुप्त हो जाता है। यही सूक्ष्म परिवर्तन है। इसे हम नकार नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन अनुभूति के धरातल तक ही सीमित रह जाते हैं। जो परिवर्तन समाज में ग्राह्य हो जाते हैं वे सकारात्मक हो जाते हैं, किंतु यह व्यक्ति की निजी पसंद या नापसंद पर निर्भर करता है। कोई आवश्यक नहीं है कि जो परिवर्तन हमारे लिए सकारात्मक है वो दूसरे के लिए भी हो। जो सार्वजनीन एवं जनहित पर आधारित परिवर्तन होते हैं वह सकारात्मक परिवर्तन कहलाते हैं और वह परंपरा का रूप भी ले लेते हैं। इसके विपरीत जो परिवर्तन समाज में ग्राह्य नहीं हो पाते वे अपनी स्वाभाविक वृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें हम नकारात्मक परिवर्तन की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार परिवर्तन विकास का सोपान है। ग्राम, जनपद, राज्य, देश, राष्ट्र सभी के विकास में परिवर्तन की अहम भूमिका है। वैदिक काल से लेकर आज तक हमारी मनोदशाओं में अनेकानेक परिवर्तन हुए हैं। पहले हम उचित अनुचित का ध्यान रखते थे, अब हमारा औचित्य का निर्णय स्वार्थ परक हो गया है। हम आध्यात्मिक से ज्यादा व्यवहारिक हुए जा रहे हैं। हम साधक चिंतक के मार्ग से हटकर कर्मकांड की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। संप्रति अध्यात्म में कर्मकांड का स्थान अधिक प्रभावी हो गया है। इसी कारण समाज में विकृति बढ़ती जा रही है। पहले वर्ग विद्वेष, जाति विद्वेष, धर्म विद्वेष इत्यादि हमारी संस्कृति में नहीं थे। हमारी संस्कृति में विविधता में एकता थी, किंतु अब चिंतन की दिशा बदलने के कारण एकता विविधता की दिशा में भटकने लगी है, जो अत्यंत खेद का विषय है। यदि भारत को सोने की चिड़िया बनना है तो हमें वैदिक संस्कृति को अपनाकर एकता के सूत्र में एक मौक्तिक माला बनना पड़ेगा।
1: परिवर्तन। डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ल के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं अब प्रस्तुत है आस्था प्रार्थना आत्मा व परमात्मा के प्रेम भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम आराधना।

हे प्रभु, हम सभी के दुखों का आपको ज्ञान है। हमारी इच्छाओं से, हमारी आशाओं से आप भली प्रकार परिचित हैं। हे प्रभु, आपकी शरण में आकर हम सभी भक्तों को सुख मिलता है। आपके सिवा इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है।

सुबह की इस पावन बेला में जब सूरज की पहली किरण संसार के कण कण पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर ने मोतियां बिखेर दी हैं। जिस प्रकार सूरज की रोशनी रात के अंधकार को गायब कर देती है, उसी प्रकार ईश्वर का नाम स्मरण करने से हमारे अंदर व्याप्त अंधकार नष्ट हो जाते हैं।

हे माँ जगदम्बा, हम अज्ञानियों को आपकी अपार ममता का अभी तक कोई ज्ञान ही नहीं था। हम तो यूं ही प्रेम और ममता की खोज में भटकते रहे। अब तो मेरी यही लगन है कि अपनी माँ की भक्ति में लीन हो जाऊं और अपनी माँ की ममता को पालूं।

हे भगवान, इस संसार के सारे मोह और लालसाओं से हमारा मोह हटा दीजिए। हमारी आशाओं इच्छाओं से अब भली प्रकार परिचित हैं। हमारी हार और जीत सब आपके ही हाथों में है। हे करुणानिधि, हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी भक्ति में लीन हो जाएं। अब तो ये जीवन आपके हाथों में सौंप दिया है प्रभु, हम आपकी शरण में हैं।

हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय पाठ।

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि देव अनुकूल हो तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं। उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक के आंसू।

वाणी जयराम की स्वरों में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय पाठ। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का।

0: जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
4: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
3: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान्, शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्याम् परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति, यतः वैश्विक तैल वातेंधनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉ जयशंकर ह्यः बहरीन देश

0: अस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉक्टर जयशंकरः बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उपप्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमन्त्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। प्रधानमन्त्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य संभाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमन्त्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवस्य डॉ पीके मिश्र वर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता। अस्यां सभायां पञ्चदशतोप्यधिकानां मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैंड देशः वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूटआउट इत्येतस्यां क्रीडायां कोलंबिया देशं 4-3 इत्यंकतरालेन पराजित्य 54.29 वर्षात् प्रथमवारं फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 एक मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, हमारी दिनचर्या और हमारी रोजमर्रा की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी है, ये रोज हम आपको बताते हैं हमारे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं कसूरी मेथी स्वाद की खुशबू सेहत की ताकत, इसके बारे में आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सूखे पत्ते की जो न सिर्फ खाने में महक भरता है बल्कि सेहत के लिए भी चुपचाप बहुत बड़ा काम करता है। आज का हमारा विषय है कसूरी मेथी। आमतौर पर ये पत्तियाँ मसाले के तौर पर जानी जाती है जिन्हें सब्जियों, पराठों, दालों और करी में ऊपर से छिड़कने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि ये छोटी सी सूखी पत्तियाँ केवल स्वाद बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शरीर के कई अंगों के लिए संजीवनी जैसा काम करती है। कसूरी मेथी दरअसल ताजी मेथी की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। कसूरी मेथी की सबसे खास बात यह है कि इसकी भीनी भीनी खुशबू होती है। जब आप इसे किसी गर्म तड़के वाली सब्जी पर छिड़कते हैं तो उसका स्वाद ही बदल जाता है। पर यह केवल भोजन को सुगंधित करने का माध्यम नहीं है, ये आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर एक औषधि भी है। कसूरी मेथी में मौजूद फाइबर, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व इसे पाचन के लिए बेहद लाभकारी बनाते हैं। जिन लोगों को गैस, अपच, कब्ज या एसिडिटी की समस्या होती है उनके लिए ये एक प्राकृतिक उपाय है। इसकी तासीर गर्म होती है इसलिए सर्दियों में इसका उपयोग विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है। ये पेट को गर्म रखती है, पाचन क्रिया को सक्रिय करती है और शरीर को भीतर से साफ करने में मदद भी करती है। आजकल जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है ब्लड शुगर यानी कि मधुमेह। कसूरी मेथी उन कुछ देसी उपायों में से एक है जो रक्त में शर्करा के स्तर को संतुलित रखने में मदद करती है। इसमें मौजूद सोल्युबल फाइबर शरीर में इंसुलिन की क्रिया को बेहतर बनाता है और शुगर को धीरे धीरे अवशोषित करने में मदद करता है। यही कारण है कि कई आयुर्वेदिक चिकित्सक मधुमेह के मरीजों को मेथी के बीज या कसूरी मेथी का सेवन करने की सलाह देते हैं, चाहे वो चूर्ण के रूप में हो, सब्जी में डालकर हो या फिर चाय में उबालकर। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हड्डियों के लिए क्या कसूरी मेथी फायदेमंद है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें मौजूद कैल्शियम और आयरन हड्डियों को मजबूत करने और शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करते हैं, खासकर महिलाओं के लिए जो गर्भावस्था या मासिक चक्र में थकान, कमजोरी या एनीमिया से जूझती हैं। उनके लिए कसूरी मेथी एक सादा लेकिन असरदार उपाय है। इसके अलावा श्रोताओं, कसूरी मेथी त्वचा और बालों के लिए भी बेहद उपयोगी मानी जाती है। ये शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम करता है।

0: होती है जिससे त्वचा पर चमक बनी रहती है। बालों की बात करें तो मेथी का प्रयोग पारंपरिक रूप से बालों को झड़ने से रोकने, डैंड्रफ कम करने और खोपड़ी को पोषण देने के लिए किया जाता है। कई लोग सूखी कसूरी मेथी को भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाते हैं और कुछ लोग इसे आटे में मिलाकर पराठे बनाते हैं। दोनों ही तरीके स्वाद और सेहत का संतुलन बनाए रखते हैं। श्रोताओं, कसूरी मेथी की खासियत ये है कि ये हर रसोई में मिल जाती है, पर हर कोई इसके गुणों को नहीं पहचानता। ये वो मसाला है जो आपकी रसोई की अलमारी में चुपचाप पड़ा रहता है, लेकिन अगर आप इसे चाहें तो रोजमर्रा के भोजन में शामिल कर सकते हैं। चाहे वो तड़का हो, पराठा हो या फिर कोई हल्का नाश्ता, तो ये आपके शरीर में कई प्रकार से लाभ पहुंचा सकती है और वो भी बिना किसी विशेष प्रयास के। अब ये भी जानना बेहद जरूरी है कि कसूरी मेथी का सेवन बहुत अधिक मात्रा में ना करें। इसकी तासीर गर्म होने के कारण ज्यादा सेवन से कभी कभी पित्त बढ़ सकता है या कुछ लोगों को जलन की शिकायत भी हो सकती है, लेकिन अगर इसे सीमित मात्रा में स्वाद और जरूरत के हिसाब से उपयोग किया जाए तो ये एक उत्तम घरेलू औषधि है। श्रोताओं, आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम यही समझना चाहते हैं कि जब हम अपनी रसोई में मौजूद मसालों को ध्यान से देखें, समझें और उन्हें भोजन में सम्मान पूर्वक स्थान दें, तो वे केवल जायका नहीं बढ़ाते, वे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। कसूरी मेथी भी उन्हीं में से एक है जो आपके भोजन को महकाती है, सुगंधित बनाती है और आपके शरीर को भीतर से पोषित करती है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और देसी तत्व के साथ। तब तक अपनी थाली में कसूरी मेथी जैसी सादी लेकिन शक्तिशाली चीजों को जरूर जगह दीजिए। स्वाद से जुड़िए, सेहत से जुड़िए और अपनी परंपराओं को नए नजरिए से अपनाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: कसूरी मेथी, स्वाद की खुशबू, सेहत की ताकत, इसके बारे में अभी हमें जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, अब आइए डालते हैं एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 10 बजे का, जिसमें आज आप आनंद लेंगे कैलाश चंद्र शर्मा के बांसुरी वादन का। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का प्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 से, जिसमें आज आप सुनेंगे कानपुर नगर और मैनपुरी जिलों की हलचल। सुबह 9:30 का वक्त रहेगा उर्दू प्रोग्राम का, आज की पेशकश होगी आकाशवाणी गोरखपुर के मरकज से। आज सुबह 7:31 से कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सृष्टि माथुर का ख्याल गायन, राग होगा भैरव। संयम का सतत अभ्यास, इस विषय पर विविध प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। लोक गीतों से सजे लोक रंग कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे सही राम पांडे और साथी, जो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे आल्हा गायन। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर और साथ ही साथ इन्हीं का गाया आल्हा गायन आप सुन सकते हैं लोक माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 2:45 पर भी। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित ये फोन इन प्रोग्राम आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे से। एनसीईआरटी के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12 बजे का।

विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे पशुओं में टीकाकरण, इस विषय पर डॉक्टर नीलम बाला की भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। जवानों के लिए, फौजी भाइयों के लिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये पत्रों और ईमेल पर आधारित प्रोग्राम आप सुनेंगे दोपहर 1:50 से। मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आंगनबाड़ी के अंतर्गत दोपहर 1:15 से चर्चा होगी। गर्भवती को आयरन और फॉलिक एसिड की गोली खिलाएं और जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ बनाएं, इसी विषय पर। साथ ही चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, घर का काम सबका काम और परिवार नियोजन के साधन अपनाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं, इस विषय पर। साथ ही साथ आज की भेंट वार्ता का विषय रहेगा कैंसर के मरीजों की देखभाल में संतुलित आहार, नियमित दवाएं, संक्रमण से बचाव और भावनात्मक सहयोग है जरूरी, इस विषय पर AGMU लखनऊ से पेन मैनेजमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर सरिता सिंह से भेंट करेंगी नीना सोनकर। तो ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं, सुबह के 7:10 हो चुके हैं और नमस्कार लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब पेश है विविधधाम।

नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो व्यक्ति के चरित्र, व्यक्तित्व और जीवन की सफलता का मूल आधार माना जाता है। आज के विविधा कार्यक्रम का विषय है संयम का सतत अभ्यास।

जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल प्रतिभा, ज्ञान और परिश्रम ही पर्याप्त नहीं होते। यदि इन सब के साथ संयम न हो तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक ही जाता है। संयम वो शक्ति है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता देती है और हर परिस्थिति में संतुलित निर्णय लेने की प्रेरणा भी देती है।

दोस्तों, संयम का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना नहीं है, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार, अपने समय और भावनाओं को भी संतुलित रखना है। जब मनुष्य अपने क्रोध, अहंकार, लोभ और असंयमित इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, तभी उसके व्यक्तित्व में परिपक्वता और स्थिरता आती है।

भारतीय संस्कृति और दर्शन में संयम को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव आत्म संयम को श्रेष्ठ जीवन का आधार माना। उपनिषदों, भगवद गीता और अनेक धार्मिक ग्रंथों में भी इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की एकाग्रता को आत्म विकास का सबसे प्रभावी मार्ग बताया गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद

भगवद गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तविक अर्थों में बुद्धिमान और सफल कहलाता है। यही शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों सालों पहले हुआ करती थी। आज का समय तेजी से बदल रहा है। आधुनिक जीवन शैली, तकनीक और सोशल मीडिया ने हमें अनेक सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही मन को भटकाने वाले अनेक आकर्षण भी दिए हैं। ऐसे समय में संयम का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। यदि हम समय का संयमित उपयोग करें, मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, तो जीवन अधिक सफल और संतुलित बन सकता है। दोस्तों, संयम केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। संयमित वाणी रिश्तों में मधुरता लाती है, संयमित व्यवहार समाज में सम्मान दिलाता है और संयमित जीवन शैली व्यक्ति को स्वस्थ और प्रसन्न बनाए रखती है।

दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि जिन महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में अनुशासन और संयम को अपनाया है, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने निर्णय में अडिग रहे हैं। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का मार्ग हो, स्वामी विवेकानंद का आत्म अनुशासन हो, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सादगी पूर्ण जीवन, इन सभी महान विभूतियों के जीवन में संयम का विशेष स्थान था। संयम का अर्थ अपनी खुशियों का त्याग करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। यह हमें आवेश में आने से बचाता है, धैर्य सिखाता है और जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। धीरे धीरे किया गया संयम का अभ्यास हमारे व्यक्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, यदि हम प्रतिदिन अपने व्यवहार, अपनी वाणी और अपने विचारों का आत्म मूल्यांकन करें, तो हम स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और यकीन मानिए, यही सतत अभ्यास हमें बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाता है।

आज के दौर में आवश्यकता इस बात की है कि हम संयम को केवल पढ़ें या सुने नहीं, बल्कि उसे अपने दैनिक जीवन में उतारें, क्योंकि आत्मसंयम ही आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मविकास का सबसे मजबूत आधार रहा है। अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि संयम वो दीपक है जो जीवन के हर अंधकार में सही मार्ग दिखाता है। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि अपने विचारों, अपनी वाणी और व्यवहार में संयम का निरंतर अभ्यास करेंगे तथा धैर्य, अनुशासन और सकारात्मकता के साथ जीवन को सार्थक बनाएंगे। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज के विविध कार्यक्रम से दीजिए सीमा शाही को इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा मीडियम वेव के मीटर पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अगला प्रसारण हमारे गोरखपुर केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण।

0: प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अल नीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में खरीफ सीजन की प्रगति और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित असर को देखते हुए गई तैयारियों की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए, राज्यों के साथ मिलकर उन जिलों पर मानसून या देर से आए मानसून के असर का आकलन किया जाए जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कदम उठाए जा सके। यह भी निर्देश दिया गया कि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाए, साथ ही चारे के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाए और राज्यों के साथ मिलकर इस बारे में नियमित निगरानी की जाए। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के लिए मंत्रालयों को राज्यों के साथ मिलकर आपसी तालमेल से काम करना चाहिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था और आगामी श्रावण मास की तैयारियों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। आज श्री योगी वाराणसी से ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से प्रदेश में काम करने वाले 12 लाख शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री चित्रकूट में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
1: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपए की लागत की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है।
1: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है, सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है तो विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
2: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, ये निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
0: इस मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा कि वह SIT की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का कल 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 विद्यार्थियों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 विद्यार्थियों को डिग्री और 52 विद्यार्थियों को PhD अवार्ड भी प्रदान किए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
4: 20 लाख रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग

0: 280 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में अपना रहे हैं, जिसमें से एक पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
1: प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश और बूंदाबांदी का क्रम जारी है। लखनऊ, फर्रुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ सहित कई स्थानों पर कल बारिश दर्ज की गई। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हवाओं के बीच बारिश के आसार बने हैं। पीलीभीत जिले में बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अलनीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना का शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह की 7:31 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज प्रस्तुत है सृष्टि माथुर का ख्याल गायन। राग है भैरव।

0: गायन राग था भैरव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 8 बजने को है, अब से बस थोड़ी देर में रिले किया जाएगा समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और अक्सर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की

0: वर्णनी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयर ट्रंक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वही 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारी

0: तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत

0: अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यंग बरेली।

0: बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम यंग बरेली में। आप श्रोताओं को अपना नाम बताइए और किस खेल से आप संबंध रखते हैं ये बताइए।
1: मेरा नाम अर्जुन सिंह राणा है और मैं तीरंदाजी खेलता हूँ।
0: जी, कब से शुरुआत करी आपने इसकी? अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम यंग बरेली में। जी,
1: मैं 14 साल का था तब से मैंने आर्चरी की शुरुआत करी थी
0: जी।
1: और आज 5 साल हो चुके हैं आर्चरी की डेली प्रैक्टिस करते हुए।
0: तो उसका मतलब इस वर्ष इस समय जो आपकी उम्र है तो इन प्रेजेंट वो 19-20 के लमसम है?
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। तो ये बताइए अर्जुन, जब आपने इस खेल को तीरंदाज जो खेल है आपका आर्चर, जब आपने एक खेल खेलना शुरू करा तो मतलब कैसे आपके अंदर ये प्रेरणा है कि मुझे ये ही खेल खेलना चाहिए या तीरंदाज बनना चाहिए, आर्चर बनना चाहिए, ये बताएं आप।
1: पहले मेरे पापा को बहुत गेम पसंद था, ये तो पहले से ही पापा ने धनुष मंगा के रखा था फ्रांस से। तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पापा ने मुझे धनुष दिखाया और अपने बारे में बताया कि पहले मैं भी करना चाहता था। तो उस टाइम से मुझे आर्चरी के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट आया इस वजह से। और सबसे पहले राइफल क्लब में मैंने समर कैंप में गया था प्रैक्टिस करने के लिए
0: जी
1: 10 दिनों।
0: तो वहां से आपको ये लगा कि मुझे करना चाहिए कंटिन्यू?
1: हाँ जी
0: जी। तो अर्जुन ये बताइए कि आप जब तीरंदाज आर्चर हैं आप, ठीक है ना, तो कंटिन्यू कितने घंटे निकालते हैं इस खेल की प्रैक्टिस के लिए, ये बताइए।
1: डेली 6 घंटा प्रैक्टिस।
0: डेली 6 घंटे?
1: हाँ जी।
0: तो 6 घंटे मतलब जैसे कि सुबह में 3 घंटे कंटिन्यू करते हैं या शाम में 3 घंटे कंटिन्यू करते हैं, कैसे करते हैं इसको मैनेज?
1: हाँ जी, सुबह में 3 घंटे, फिर शाम को 2 घंटे और घर पे आने के बाद जिम या फिजिकल वगैरह।
0: अच्छा, कम से कम इस खेल की प्रैक्टिस में जो आप इतने अंदाज में आपको कितना घंटा देना ही देना है कॉन्सेंट्रेट होके, वो आप बताएं।
1: कॉन्सेंट्रेट होके आपको 5 घंटा तो देना ही देना है। जब तो आप तीर चलाते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट रहना बहुत जरूरी है उसमें। 5 घंटा तीर लगातार चलाने
0: कंटिन्यू मतलब 5 घंटे।
1: हाँ जी
0: जी। तो ये बताएं आप, जब आप इसकी प्रैक्टिस करना आपने शुरू करी, ठीक है, आपने सीखा होगा, सबसे पहले आपको अपना जो है टेस्ट आपने कहाँ दिखाया, अपने आपको कहाँ कैसे मतलब चेक किया कि हाँ मैं आप इस लेवल पर हूँ, वो बताएं आप, जहाँ आप गए हो दिखाने अपनी प्रतिभा का जौहर, वो बताएं।
1: सबसे पहले मैं अंडर 14 खेला था हापुड़ में
0: जी।
1: उस समय दूसरा मैच में खेला था कानपुर में
0: जी। उसमें आप क्या क्या आपने रैंक मतलब पाई थी वो बताएं श्रोताओं को।
1: मेरी हापुड़ में 82 रैंक थी स्टेट में
0: जी।
1: कानपुर में 54 थी
0: जी।
1: उसके बाद मेरा इवेंट

0: चेंज हुआ, मैं रिकर्व में आया। उसके बाद मैं गाजियाबाद में खेलने के लिए गया था, तो इंडिविजुअल मेडल था मेरा ब्रॉन्ज मेडल स्टेट में
1: जी।
0: उसके बाद में मेरा मुजफ्फरनगर में पिछले साल ही इंडिविजुअल सिल्वर मेडल था और मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल था
1: जी।
0: और अब पिछले साल ही SGFI में टीम ब्रॉन्ज मेडल था मेरा
1: जी। बहुत
0: साल में,
1: अच्छा बहुत अच्छी बात है ये। अब इस समय आप आगामी कौन सी प्रतियोगिता के लिए लगे हुए हैं वो बताएं।
0: अब इस समय तो मैं स्कूल से क्लियर हो चुका हूँ, यूनिवर्सिटी में आ चुका हूँ, तो यूनिवर्सिटी गेम होते हैं इंटर यूनिवर्सिटी, तो उसमें इंडिया जाने का कोशिश में लगे पड़े।
1: अच्छा अच्छा, चलिए, मतलब आप स्टेट लेवल तो आप खेल ही चुके हैं, नेशनल लेवल तक आपने अपना जो है प्रतिभा का जौहर दिखाया है जी। तो अर्जुन जी ये बताएं, आप श्रोताओं को, बहुत से श्रोता आप दूर दूर के आपको सुन रहे हैं, आप ये बताएं कि इस खेल को खेलने के लिए सबसे पहले एक क्या योग्यता होनी चाहिए एक प्लेयर में या किसी भी मतलब बच्चे में जो इसको करना चाहता है, तीरंदाज को खेलना चाहता है।
0: तीरंदाजी करने के लिए सबसे पहले तो माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए
1: जी। बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेशन, माइंड सेट बिल्कुल सही कर रहे हैं।
0: कॉन्सेंट्रेशन बहुत होना चाहिए और सबसे जरूरी है कि एक विल पावर होनी चाहिए प्लेयर के अंदर
1: जी। बिल्कुल सही बात है कि मुझे ये इस सब तरफ से जाना था कि इस पे लगाना है, करना ही है इसको।
0: हाँ जी, मुझे आज इतना करना है तो मुझे करना है,
1: करना है, करना है।
0: कुछ
1: जी जी, मतलब फिजिकली स्ट्रांग तो होना ही चाहिए, संग में माइंड सब ज्यादा होना चाहिए ना।
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी। अर्जुन जी बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, आपको जो है जगह जगह अपनी प्रतिभा दिखाने का आपको मौका भी मिले और आप उसमें खूब आगे क्षेत्र तक जाए, क्षेत्र में जो भी आप जाना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आप नाम रोशन करें हमारे देश का जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम यंग बरेली में। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। श्रोताओं, आज 8 जुलाई को हम मनाते हैं हर साल विश्व एलर्जी दिवस। जी, ये WHO द्वारा शुरू किया गया था और साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एलर्जी के कारणों, इसके लक्षणों और बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना है। इसका उद्देश्य है कि एलर्जी के समय पर डायग्नोसिस, उचित उपचार और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों को, समस्या को कम करने के लिए इसके महत्व पर जोर देना है। एलर्जी क्या है? एलर्जी जैसे कि क्या होता है कि ये जो बाहरी धूल से हो जाती है, पर्यावरण प्रदूषण जो आजकल सबसे ज़्यादा है, पराकण, धूल, खाद्य पदार्थ या दवाइयों के प्रति हमारे इम्यून सिस्टम की एक असामान्य प्रतिक्रिया है। इसमें प्रमुख लक्षण जो है, जैसे कि छींक आना, नाक बहना, आपकी स्किन पर चक्कर।

लगते, रैशेज हो जाना, आंखों में जलन होना और सांस लेने में जैसे कठिनाई होना, इस तरीके के लक्षण सामने आते हैं। अपने ट्रिगर्स यानी एलर्जेंस की पहचान करें, हमेशा एलर्जिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट की सलाह लें और धूल मिट्टी से बचने के लिए एयर प्यूरीफायर्स का आप उपयोग करें। और साथ ही अगर आपको धूल से एलर्जी है तो आप अपने आप को जब बाहर जाते हैं तो पैक करके रखें, मास्क लगा के जाएं, जिससे कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ किसी भी चीज़ को छोटा लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये ध्यान दें कि आपको दिक्कत किस चीज़ से हो रही है, दिक्कत हो रही है तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

और श्रोताओं, अब बरेली शहर की खास खबरें। विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह की तैयारियां हैं तेज, गर्मी के चलते बदलेगा ड्रेस कोड। महिला सदस्य पहनेंगी साड़ी और पुरुषों के लिए होगा कुर्ता पैजामा पर हो रहा है विचार। और रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक, समिति संयोजक से मांगी गई रिपोर्ट। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षा समारोह का आयोजन 4 अगस्त को प्रस्तावित है, इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सोमवार को कुलपति कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई, इससे गठित 32 समितियों के संयोजकों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं मानसून के चलते वर्षा से बचाव की व्यवस्था करने व गर्मी के अनुसार ड्रेस कोड बदलने पर ही विचार किया गया है।

18 विद्यालय में ताइक्वांडो बैडमिंटन के लगेंगे शिविर। जिले के सभी 18 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए विशेष शिविर लगाए जाने की है योजना। इसके लिए शासन से मिले निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा। एक जिला एक खेल योजना में चयनित खेलों के लिए विशेष शिविर एक साथ लगाए जाएंगे। सभी 18 विद्यालयों की छात्राओं को इस शिविर में शामिल कराया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGVV में छात्राओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा के तहत राज्य और जिला स्तर पर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में छात्राओं को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण देकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। यह योजना में एक जिला एक खेल से संबंधित ताइक्वांडो बैडमिंटन के साथ योग के विशेष शिविर भी लगाए जाने हैं।

बैकयार्ड मुर्गी पालन सबसे सस्ता उद्यम दिया प्रशिक्षण। जी हां, किसानों की आय से दुगुना करने के उद्देश्य से केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CRI में DAPSC परियोजना के तहत विभिन्न गांवों से आए किसानों को बैकयार्ड मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया। निदेशक डॉक्टर जगबीर सिंह त्यागी ने कहा कि उन्नत देसी नस्ल की मुर्गियां साल भर में 200 अंडे देती हैं। इन्हें घर के पीछे के खाली स्थान में आसानी से पाला जा सकता है। और डॉक्टर मतीन अंसारी ने सभी किसानों को ये भी बताया कि बैकयार्ड मुर्गी पालन अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही कहा कि हर संभव सहायता का भी आपको इसके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। और डॉक्टर विनय ने कहा कि बैकयार्ड मुर्गी पालन सबसे सस्ता उद्यम है जिससे प्रोटीनयुक्त आहार की प्राप्ति होती है। अंत में 85 किसानों को 20 उन्नत देसी नस्ल और 1 महीने की पाली हुई मुर्गियां और मुर्गे 20 किलो दाना प्रदान भी किए गए। और साथ ही साथ जूनोटिक बीमारियों के

प्रति विद्यार्थियों को किया गया जागरूक। IVRI के पशु चिकित्सा जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को विश्व जूनोसिस दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम शांति अग्रवाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में संग हुआ। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को जूनोटिक बीमारियां, पशुओं से इंसानों में फैलने वाले रोगों के प्रति जागरूक करना है और रोकथाम के स्वस्थ तरीकों को बढ़ावा देना रहा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यंग बरेली। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं और अब आप सुनेंगे लोकगीतों को। आज कलाकार हैं नीलम वर्मा।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे लोकगीतों का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 9 बजने वाले हैं और अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: दोस्तों, इस वक्त चित्रलोक कार्यक्रम में हमें जाना है एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक पाठशाला। इस फिल्म का गाना तुलसी कुमार, आकांक्षा लामा और हनीफ शेख की आवाजों में, गीत और संगीत हनीफ शेख का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अब आइए सुनते हैं रॉय फिल्म का गाना। मीत ब्रदर्स अनजान फिएट और कनिका कपूर की आवाजों में, कुमार के बोल, संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है सोना महापात्रा की आवाज में फुकरे फिल्म का गाना, मुन्ना धीमान का लिखा हुआ गाना, राम संपत का संगीत।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं बैंड बाजा बारात। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना विशाल मिश्रा की आवाज में, राजशेखर के बोल, विशाल मिश्रा का संगीत, फिल्म का नाम एनिमल।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना। सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। साथियों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कॉमेडी के बादशाह जगदीप पर केंद्रित कार्यक्रम।
1: मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ए भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने जनाब। हम जानते हैं कि आपका नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। हुजूर, हमने तो पहले ही कहा कि कॉमेडी की दुनिया के असली सूरमा जनाब सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी साहब के बारे में आज हम बात करेंगे। जी दोस्तों, यही है जगदीप साहब का असली और पूरा नाम।

0: आएगा।
1: 29 मार्च 1939 को दतिया में जन्म हुआ जगदीप साहब का। पर्दे पर आकर इन्होंने अपना नाम जगदीप रख लिया और दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जगदीप साहब की अपनी जिंदगी की शुरुआत

0: बात कैसी रही, कैसे दुख दर्द से भरी जिंदगी के बीच भी जिंदा दिली से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, बताएंगे इस गाने के बाद।
1: इन

0: बहुत कम उम्र थी जगदीप साहब की जबकि देश का विभाजन हुआ। उस समय तक इनके पिता का भी देहांत हो चुका था। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लिहाजा माँ बेटे बंबई यानी आज की मुंबई आ गए। बहुत छोटी उम्र यानी 6 या 7 साल की उम्र थी। सर पर सिर्फ माँ का साया, भूख, अभाव और गरीबी से जूझता बचपन। उस जद्दोजहद भरी जिंदगी में जगदीप साहब की माँ को एक यतीम खाने में काम मिल गया जहाँ वो खाना बनाया करती थी। इसी तरह एक तंग बस्ती में जिंदगी बसर हो रही थी। माँ की कोशिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख ले, सो जगदीप साहब को वो स्कूल भी भेजा करती थी।
1: तुम तो बहुत विद्वान हो, इतनी विद्या कहाँ से सीखी?
2: चीन्स पोकली दादर लोअर पर्ल यूनिवर्सिटी।
0: इस कम उम्र में भी बालक जगदीप को ये समझ में आ रहा था कि जिंदगी का हर एक दिन गुजारना उसके और उसकी माँ के लिए कितना मुश्किल है। बालक जगदीप बस्ती के दूसरे बच्चों को काम करते देखता तो सोचता कि मैं काम क्यों नहीं कर सकता हूँ। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा पढ़ाई छोड़े, लेकिन आखिर जिंदगी की जरूरतों के आगे माँ को भी बालक जगदीप की जिद के आगे झुकना पड़ा। खेलने कूदने की उम्र में बालक जगदीप ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, कभी क्लीनर, कभी सामान ढोना, कभी पतंग बनाकर बेचा करना। जिन पतंगों को जगदीप बना बना कर बेचा करते थे वो पतंगें आसमान में परवाज भरती थीं। बस उन्हें एक डोर की जरूरत होती थी। जगदीप को क्या पता था कि वो भी एक दिन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले।

0: और आखिर वो दिन आ ही गया जब पतंग की डोर की तरह जगदीप की किस्मत की डोर बनकर एक शख्स उसी सड़क पर आया जहां बालक जगदीप काम किया करता था। उसे 5 से 10 साल तक के बच्चों की तलाश थी। जगदीप के पूछने पर उसने बताया कि एक फिल्म में एक सीन में उसे कुछ बच्चों की जरूरत है जहां सिर्फ बैठे रहना है और इसके लिए हर एक बच्चे को रोज के 3 रुपए मिलेंगे। बस फिर क्या था, उस सड़क के बहुत से बच्चों की टोली चल दी शूटिंग के लिए। इसमें बालक जगदीप भी थे। शूटिंग में एक दिन जगदीप को एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। चूंकि जबान इनकी बड़ी साफ थी, उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते थे, लिहाजा डायलॉग बोलने के उन्हें 3 रुपए अलग से मिले। ये काम जगदीप को बहुत भाया। वो फिल्म थी अफसाना, निर्देशक थे बीआर चोपड़ा और इनके सहायक निर्देशक थे यश चोपड़ा। बस यहीं से शुरू हुआ बालक जगदीप का फिल्मी सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट।
1: और अपना नाम है लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, पोस्टर चिपकाने वाला एंड कंप्लीट, समझा।
0: फिल्म दर फिल्म जगदीप काम कर रहे थे, प्रतिभा निखर रही थी, फिल्म सर्किट में लोग पहचानने भी लगे थे। तभी फणी मजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में नायक किशोर कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का जगदीप को मौका मिला और इनके अपोजिट थी बालिका आशा पारेख। धोबी डॉक्टर में जगदीप का काम देखकर फिल्मकार बिमल रॉय ने जगदीप को फिल्म 2 बीघा जमीन में काम दे दिया।
2: कन्हैया यार, तू पूरा चपड़ घंचू, काम से जा रहा तूने टोक दिया।
3: कहाँ जा रहे थे?
2: बगदाद
3: है।
2: अबे यार, बगदाद सिनेमा, रंजन है उसमें।
3: वाह वाह, क्या तलवार चलाता है। सेट सेट सड़ा, क्या जान से मार देता है।
2: हाँ चल, चलता है
3: ना बाबा।
2: अबे चल, मैं दिखाऊंगा, आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ
3: 2 रुपए इतने कहाँ से मिले?
2: अरे जूता पॉलिश करके। आज एक असली साहब वापस आ, ऐसा जूता पॉलिश किया के बेटा कायल हो गया। हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, और फटा से 2 रुपए हाथ पर धर दिए।
0: अब तक जगदीप ने जवानी में कदम रख दिया था और फिर हीरो भी बन गए। फिल्म आई भाभी, आज भी लोग याद करते हैं। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी नंदा।

0: किरदार निभाए, लेकिन दर्शकों ने इनके मजाहिया अवतार को बेहद सराहा। फिर जब फिल्म शोले आई तो सूरमा भोपाली ने जगदीप को और जगदीप ने सूरमा भोपाली को तो मानो अमर ही कर दिया।
1: अरे कोशिश, ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को दी मैंने पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग जो खींचिए के जाते किधर हुआ, और कस के धो दिए लबाड़े के चलो थाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
2: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
1: हाँ हाँ,
2: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
1: अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
3: फिर क्या हुआ?
1: अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मैंने फिन फिनाई तो जरा सुधाई कर दी, जटा बहुत मारा बहुत मारा।
3: फिर क्या हुआ?
1: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
3: क्या कहा?
1: क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे।
0: जगदीप साहब के बेटे जावेद और नावेद भी फिल्मों और टीवी पर सक्रिय हैं। जावेद तो जगदीप साहब की तरह ही हरफन मौला कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे डांसर माने जाते हैं। जावेद जाफरी।

0: जगदीप साहब ने एक बहुत ही लंबी पारी खेली अपने फिल्मी करियर में और अपने सभी सहकर्मियों फिल्मकारों के चहेते बने रहे और दर्शकों के तो आज भी चहेते हैं।
1: शाम को

0: सकते हैं।
1: देखो हाँ, अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ये था बेहतरीन अदाकार जगदीप पर केंद्रित प्रोग्राम आज के फनकार।
2: अरे हम पंछी एक डाल के, एक डाल के,
0: अपने हिस्से का किरदार निभाकर दुनिया की डाल से उड़ गया ये पंछी। जगदीप साहब भले ही चले गए हों, लेकिन उनका निभाया हर एक किरदार हमारे आसपास हमेशा रहेगा।
2: ओए संग

0: संग संग डोले जे संग संग डोले हम पंछी एक डाल के
1: शोध आलेख और स्वर अमरकांत का प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन अब नमस्ते
2: आज के फनकार

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 10 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
2: इश्क

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में। और साथी कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज आप सभी लोगों प्यारे श्रोताओं का कमेंट हम तक पहुंचा है। मोहल्ला हलवाइयाँ शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। ग्राम दुलापुर जिला मुरादाबाद से हैं मुकेश शर्मा, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह का। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल सहाने, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक, संदीप। रामगढ़ कैंट झारखंड से हैं लिपि सहाने। ज्योति नगर नोखरा राजस्थान से हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का का। प्राण शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य का। गंज डुडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेखम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। बिलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जेबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान का। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। पद्मा टाकेश नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह। नीति शाह सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह। अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से हैं मनोहर मगर, यामिनी मगर और उदयन साथी हैं अर्पिता। मणिनाथ बरेली से हैं डॉक्टर अद्भुत दीक्षित। कोका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। रमदा ग्राम सुखरी कला से हैं आप सभी लोग अमित, शकुन, आरोशी, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल का। आप सभी ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है कटी पतंग और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। भेजने वाले हैं अक्षो कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से हैं मनोहर, यामिनी, उदयन और अर्पिता, और साधुल शहर से हैं राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना से है मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवर तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन।

दीन राम भाव तांदले, धोतर जोड़ा आष्टी से हैं दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते, गंज डुंडवारा से हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, उत्तम नगर दिल्ली से हैं भोदराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का, सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना, बागपत से हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया, जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना, महेशपुर खेम से हैं जिला मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से हैं जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, राजस्थान से हैं रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान, जिला नादेड़ ऐताला महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल, चदौसी रोड चमनपुरा से हैं मुकेश गौतम, सुनील अमन, उदयनगर खंडवा से हैं नदीम भाई, बहजोई से हैं राजू जी, पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, बोड़ाकाशी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, दुर्गा कॉलोनी हासी से हैं राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी, साथी हैं सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पुनाराम देवांगन और कृष्णा का, लोहरडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी, गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, जलावाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का, और आप सभी लोगों ने ये कमेंट हम तक पहुंचाया है। मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का, कैला मुरादाबाद से हैं आप सभी लोग अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख का, आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है पाकीज़ा और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। जहां है आप वहां है हम। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है रामपुर लिसनर क्लब से हैं, नलापार बाग छोटे साहब रामपुर से, नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम माद का, दादा बाबू रोड ग्रीडी झारखंड से हैं, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, पिफरा नवाज और बेबी चाहत, साथी हैं सादिया। ग्राम कोठा मक्खन बरेली से हैं अफरोज अंसारी, फारूक अंसारी, कस्बा मीरगंज बिजली घर से हैं आदर्श दिवाकर, लव जय, ओमिंद्रपुरी गोस्वामी और भाई कल्लू मिस्त्री। कुडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। रायगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं विनोद बंडलकर, वीणा बंडलकर, विविधा बंडलकर। जिला मुरादाबाद ग्राम बिलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। गढ़ी कोटाहा जिला पंचकूला हरियाणा से हैं सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन

श्रोताओं, आपकी पसंद में ये पसंद हम तक पहुंची है, आप सभी की कमेंट पहुंचा है हमारे पास। ग्राम अमना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। रघुनाथपुरा, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। ग्राम कैली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्बर हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन अंसारी का। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, मनीष वर्मा, रेहान खान, जोशी बेबी, हंसिका जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। परीमेल कासगंज से हैं आवाद खान, नबील खान, अरफा खान, इल्मा खान, शमसुल कमर और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से हैं ममता मार्केंडे, संजय मार्केंडे और बेबी किट्टू। चनौरा, जिला फिरोजाबाद से हैं बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और इनके सभी साथी। यवतमाल, विदर्भ, महाराष्ट्र से हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। बाबा कुटी, रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी।

और उत्कर्ष चौहान का, नेहरू चौक पैठर से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव जालना शहर से हैं, सोमनाथ, गीता, ओम सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता। हरियाणा झज्जर से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और मयंक भाटिया, साथी हैं रजत भाटिया। गांव खोकारा वाली श्री गंगानगर से हैं विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा का। मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा जिला बरेली से हैं मोहम्मद हसन अंसारी, अजरुद्दीन अंसारी, तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, नाजिश तबस्सुम। बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं आसलगांव बाजार से राजू माठे, श्री संतोष काले जी, गजानंद सालोकर जी, सुरेश भिसे पाटिल जी, देवेंद्र भटकर जी और प्रकाश दानगे। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता। हजारीबाग झारखंड से हैं वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जितेंद्र, ऋषि और राहुल। लाल कुर्ती रुड़की गैंड से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा। लगान मंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, पीएस नभाकर। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानकचंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष कोयल, डुग्गू भाविक सिक्का। उदयपुर राजस्थान से हैं बाबू भाई भारती, रमेश नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल। और सफीदो सिटी हरियाणा से हैं नानक खन्ना, चंचल, लाडो, लवली, रजत, लव, कुश और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी, इनके दोस्त। भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से हैं प्रियांश सोनी, आरोही, संगीता मिस्कीन, काशीनाथ, गणेश और चंद्रकला, वाणी आरव, रितिका मिस्कीन। ये कमेंट हमारे पास आया है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हैं वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बेबी नुसरा खान। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक और जैतेक विरक, साथी हैं मीका विरक। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार का। गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी का। ढानकी रोड उमरखेड़ से हैं भाई रज्जाक खान, शबाना बेगम, जावेद खान और आसमा परवीन का। समता नगर काष्टी से हैं लक्ष्मण जी जगताप, श्रेया शिंदे, मानसी शिंदे और निशांत जगताप का। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम सुरलकर का। कस्बा उघेती से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज, पंकज, प्रिंस, प्रशांत, कार्तिक और निर्भय का। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं और इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। शनि बाजार कस्बा उघेती से हैं प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन, देव, प्रियल और कायरव गुप्ता का साथी, इनके परिवार के सभी सदस्य। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, ऋषभ सिंह, प्यारी गुड़िया, वेदा सिंह। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं आप सभी लोग, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। राम देवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से हैं बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य का। गांव हीरावाली फजलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। छप्परवाली मस्जिद कासगंज से हैं मोहम्मद जाहिद अली सैफी, आबाद खान, मोहम्मद जोहान सैफी और लीबा मलिक। ग्राम बन वघेरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से हैं योगेश सारवा, आशा, नीरज, नीलेश, अंजलि, बेबी ख्याति। ग्राम उरेटा डोंडी लोहारा जिला बालोद से हैं देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली पूजा, मास्टर अल कबीर तामुरिया। मौलागढ़ नई बस्ती जिला बरेली से हैं तरुणु अंसारी, तराना अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी, इनके दोस्त। गनगोला दत्तागंज बदायूं से हैं इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान का। ग्राम पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तनवी बोत। पहाड़गंज मोतानी राणा से हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का। दरबार कॉलोनी सनावत से हैं किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणव सांवले का। महाराष्ट्र से हैं आप सभी लोग बुलडाणा से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। अडार नांदगंड घाट छत्तीसगढ़ से हैं माखन लाल, माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा का। ओखला संगम विहार से दिल्ली से हैं रणधीर गुप्ता, कबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से हैं अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता। मोटक्का फार्मी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति पटेल, शुभम देवी, किशन भावना, मन मानस और कनिका पटेल को। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू का। गाड़ी खाना चाईपासा झारखंड से हैं जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन विश्वकर्मा, सावन कुमार, सचिन और शक्ति। को सिटी बरकाकाना से हैं अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक का। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर से हैं आप सभी लोग मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभय मीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या गौतम और साथी इनके सभी मित्रगण। लेपई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

श्रोताओं, आपकी पसंद में ये कमेंट हम तक आया है। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष शिवन्या और अनु गोस्वामी का। मजनू का टिल्ला से है कमल वालूजा, मधु सागर, उमंग, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। शास्त्री नगर बीड शहर से है किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और पिसगल सपकाल का। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दाता सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। मेरठ से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। कोटवा नारायणपुर वावापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित, हैप्पी, दुबिया, नेवादा। जिला गाजीपुर से हैं

प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जय श्री महत्रे, अंजलि गरवा, पाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल और धनंजय ट्यूबल और साथी हैं पीवी कुल्थेगा। राज पैलेस मऊनाथ भंजन से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई सुणकार, पिंकी सुणकार, आर्यन कृष्णा और पीहू सुणकार का। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हैं विजय मोहबिया, कविता मोहबिया, विशाल, सोनू, मोनू, रानू, ईशु, बाबा और बाबू का। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी का। प्रमीलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा का। और शाहू नगर यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सल्ला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी का। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं आप सभी लोग। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश और मिथिलेश वर्मा का। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा का। अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दिव्या मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव का। राजकोट गुजरात से हैं रश्मि झरना, भरत कुमार और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है। पित्रामल बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नहाटा। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन, अंकुश, जय जिनेन्द्र। श्रोता संघ परमणि महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई और प्रतेश संघई, साथी हैं इनके परिवार के सभी सदस्य और साथी इनके दोस्त। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर सिंधा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं पोपट राव कुलथे, हनुमंत कुलथे, प्रथमेश कुलथे और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। मछली गोदाम कैदमुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है शराबी और इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

यातायात के नियमों का पालन कीजिए, यह आपका कर्तव्य है। अपने और अपने आगे के वाहन से उचित दूरी बनाए रखिए। आज की बचत ही कल की सुरक्षा है। जल की बूंद बूंद कीमती है, कृपया इसका दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सुरक्षित चलिए, धीरे चलिए और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचिए।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 11 बजे हैं और अब आप सुनेंगे सब रंग। सब रंग में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुरेश वाडेकर के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और लीजिए, आप सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम ओनली 100.4 FM पर। और लीजिए, आप सुनिए सुमन यादव के स्वर में ये गजल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सबरंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और अब प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में हमारी पुरजोर कोशिश है कि ये लाइन डिस्कनेक्ट बिल्कुल भी ना हो। हेलो हेलो, ये वाली जो लाइन है वो किसी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाती है। अशोक कुमार सैनी जी हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे से दो संदेशों के साथ वो रेडी थे, तो उनसे हम एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और देखते हैं मिल जुड़ जाए तो।

0: हेलो, नमस्कार, थोड़ा जोर से बोलिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार, अपना नाम भी बता दीजिए।
1: मेरा नाम अल्तमस अली है, लखनऊ से बात कर रहा हूँ।
0: अल्तमस जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे में। कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम, आप बताइए कैसे हैं।
0: हम ठीक हैं। थोड़ा फोन के पास आके बात करी, चूंकि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी आ रही है।
1: नहीं मैम बताएं, वो हवा बहुत तेज चल रही तभी शायद आवाज चली जाती है।
0: हाँ, अब आपकी आवाज़ थोड़ी सी ठीक। अच्छा, हवा बहुत तेज चल रही है, यानी कि अभी बारिश हुई नहीं वहाँ पर।
1: नहीं मैम, आपकी तरफ ही बादल जा रहे हैं और इधर तो ये नहीं है। ठीक
0: अच्छा जी, तो अल्तमस कैसे हैं आप?
1: है मैम,
0: ठीक हैं। और क्या करते हैं आप अल्तमस?
1: बस मैम पढ़ाई करते हैं।
0: पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई से ही आगे भविष्य वो संवरता है। अल्तमस, क्या कहना चाहते हैं आज प्रोग्राम से?

0: देशा आपके गीत हमारे में।
1: मैम हम ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि जिंदगी में बहुत से फैसले आते हैं तो हमें उनको सोच समझ के करना चाहिए, और उनको
0: और देखिए संदेश इनका आते आते बीच में कहीं रह गया, कोई बात नहीं। और ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आते हैं तो उनका संभल कर सामना करना चाहिए और सूझबूझ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इनकी ऐसी कुछ बात थी जितना हम समझ पाए, तो इनकी बात को हमने आप तक पहुँचाया और उसके बाद हम कुछ मेल भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। सैफ अंसारी जी ने लिख दिया है, गुड मॉर्निंग है मैम जी आप सभी और हम सभी सिस्टर्स हसबा अंसारी, उमरा अंसारी, श्रृंगार नगर लखीमपुर खीरी से आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। और मैम हमारे यहाँ बादल छाए हैं हुए हैं और गर्मी भी बहुत हो रही है, तो मेरा संदेश ये है कि कुछ ग्रामीणों ने बहुत नहाते कुछ ग्रामीण बहुत नहाते हैं दिन में कई बार, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, ऐसा हम संदेश देना चाहते हैं। अच्छा, गर्मी की वजह से कई लोग कई बार नहाते हैं, तो इन लोगों का कहना है सैफ अंसारी जी का कि इतनी बार ना नहाया करें क्योंकि हो सकता है बहुत बार नहाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो आपने अच्छी बात है संदेश पहुँचाया, हो सकता है जो लोग इसको सुन रहे हैं उस पर अमल करें और सूझबूझ के साथ भी नहाना शुरू करें। तालिब अंसारी जी का भी मेल आ गया, हमें लगता है एक ही जगह से अलग अलग नाम से मिला है। और तेज हवाएं आंधी आने के टाइम छत पर खुले में कभी भी ना रुकें। एक बार की बात है कि हम छत पर थे और तेज आंधी आई चली और ठीक एक टीन शेड हवा में उड़कर हवा में साइड से निकल गया और मेरी तो बिल्कुल सांस रुक गई, बस बच गई। तो तालिब अंसारी जी राजा कटरा बाराबंकी से आपने ईमेल लिखा है और बहुत अच्छी बात है कि अगर आंधी वगैरह चलती है तो आप कोशिश करिए कि आप घर के अंदर रहें, अगर आप खुले में भी सड़क पे कहीं जा रहे हैं तो किसी किनारे शेड के नीचे आप वहां पर ठहर सकते हैं। ये आपका एक संदेश है जो लोगों के लिए एक एहतियात बरतने और साथ में एक अवेयरनेस का ये संदेश, बहुत ही शुक्रिया आपको। भैया मोनू सेठ जी का भी मेल आ गया है और ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये मेल में अपने, ये लिखते हैं कि इतने साल नहीं खत्म होते प्लास्टिक बैग थैली, 20 साल के कप 50 साल, अच्छा प्लास्टिक के स्ट्रॉ 200 साल, पानी कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी 450 साल, डिस्पोजेबल डायपर भी 500 साल, टूथब्रश भी 500 साल। अच्छा, प्लास्टिक कभी भी जैविक रूप से सड़ता नहीं है, ये सिर्फ धूप और हवा के कारण छोटे छोटे रिकणों में बदल जाता है जो सदियों तक हमारी मिट्टी और पानी में मौजूद रहते हैं, इसलिए प्लास्टिक से आप दूरी बनाकर रखिए, ऐसा मोनू सेठ जी का निवेदन है और ये उनका संदेश भी है। जी हाँ, देखिए कई बार लोगों ने झोलों का जो थैला लेकर जाते हैं उसमें प्लास्टिक को बिल्कुल दूर दरकिनार कर दिया और कपड़े के झोले सिलकर या खरीद कर उनको यूज करना शुरू किया, तो आप भी अगर पॉसिबल है तो ऐसा कुछ अपना सकते हैं और प्लास्टिक से दूरी बना सकते हैं। तो चलिए प्लास्टिक से भी आप दूरी बनाइए, लेकिन प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में जुड़े रहिए और अब इस ट्रैक को एंजॉय करने की बारी आ गई। रत्ना कहती है जुड़े रहिए, कहीं मजाइए, आप जुड़े हैं धड़कन लखनऊ की के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: वाकई में दोस्तों आप इस तरह से प्यार मोहब्बत निभाते रहते हैं 100.7 एफएम रेनबो के साथ, और इसकी हमें बहुत खुशी है। इसके साथ साथ आप लोगों को भी शायद खुशी होती है, तभी आप हमें फ़ोन भी करते हो, मेल भी करते हो। और अब हम देखते हैं किनकी आवाज़ हमसे जुड़ने जा रही है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, देखिए इस लाइन में थोड़ी सी कुछ ख़राबी है, जिसकी वजह से टेक्निकल फॉल्ट कुछ है, जिस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। फिलहाल हमसे अभी बात की मोहम्मद सलमान जी ने, और बहुत ही उन्होंने सलीके की दो बातें बताई। संडीला से इनका फ़ोन आया था और इन्होंने कहा कि अभी जो पिछले दिनों, अभी जैसा कि मैंने मेल में शामिल किया कि आंधी तूफान में बाहर ना निकला करें, तो ऐसे कुछ वाकया इनके साथ हुआ कि छत पर ये हस्बैंड वाइफ टहल रहे थे, उसी वक्त आंधी तूफान आया, और जब तक ये लोग हटते हटते साइड में कहीं इनके छत पर टीन भी है, टीन के करीब बाँस भी रखा था, तो बाँस का वह टुकड़ा आंधी के ज़ोर से गिरा और वो इनके सर पर लग गया, वाइफ के, और वाइफ का सर फट गया। तो ये ऐसा एक हादसा हुआ। तो इनका ये कहना था कि लोग अपनी छत पर इस तरह का कोई सामान ना रखें, अगर रखें तो फिलहाल खुले में आंधी के टाइम में बिल्कुल भी ना रहें। और दूसरा इनका सजेशन, इनका संदेश था कि इनका ये था कि इनके फिलहाल खुद के बच्चे ने एक आध दिन पहले स्कूल के लिए निकला और स्कूल ना पहुंचकर उसने मतलब कि बोल रहे थे कि गोला मार दिया, यानी कि बीच में एबसेंट हो गए, और एबसेंट स्कूल ना पहुंचकर वो कहीं और गए। और इस तरह से कई लोग इस बच्चे इनके आसपास के ऐसा करते हैं। संडीला की बात कर रहे हैं, और भी कहीं हर जगह ये बात होती है, हर शहर, हर गाँव, हर जगह की बात है। तो पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें कि उनका बच्चा क्या वाकई में स्कूल में उसकी प्रेजेंस है, वो प्रेजेंट है स्कूल में, और टाइमली घर जाना, घर आना, घर से निकलना, तो कहीं बीच में बच्चा कहीं और ना जाए, किसी तरह का एब्सेंट ना हो, या फिर ये चीज़ें और लोगों तक ना फैलें, इससे पेरेंट्स थोड़ा सा एहतियात करते हैं। तो चलिए भाई, ये बात भी आपकी ऑन एयर हो गई, और अब हम देखते हैं कि समय तो थोड़ा कम बचा है, तो किन किन के मेल हम शामिल कर सकते हैं उनको भी हम देखना चाहेंगे। शेषपाल सिंह जी का मेल आ गया है। नमस्कार आपको भी बहुत बहुत, और मैं इस वक्त तकरोही लखनऊ से मैं जेसीबी चला रहा हूँ। अच्छा शेषपाल जी जेसीबी चला रहे हैं तकरोही में, मौसम बहुत सुहावना हो गया है, प्रोग्राम का आनंद ले रहा हूँ। बड़ी गाड़ियाँ चलाते समय छोटी गाड़ियों और पैदल चलने वालों का ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं भी दे रहा हूँ। अरे वाह, शेषपाल जी जेसीबी ऑपरेटर हैं और बाराबंकी के हैं ये, इस वक्त फिलहाल तकरोही में जेसीबी चला रहे हैं, तो आपका बहुत

बहुत धन्यवाद, आपने लखनऊ से ही हमें मेल किया है। और बड़ी गाड़ी वाले छोटी गाड़ी चलाने वालों का ध्यान रखिए, और आप भी रख रहे हैं, आपने लोगों तक ये संदेश दिया, बहुत प्यारी सी बात। गाड़ी चलाते चलाते आपने वक्त निकाला और संदेश सेंड किया, थैंक यू। अब मिसेस गीता सेठ जी का भी मेल आ गया है। मजाक करना लिखती है एफएम दीवानी, ये लिखती है मजाक करना तब तक सही है जब तक वह सामने वाले को हंसाए, ना कि उसे ठेस पहुंचा या अपमानित करे। स्वस्थ हास्य तनाव कम करता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है, लेकिन किसी की कमजोरी, शारीरिक बनावट या व्यक्तिगत समस्याओं पर मजाक करना बिल्कुल गलत है। मजाक का मतलब सामने वाले के साथ हंसना, ना कि उस पर हंसना और उसका मजाक उड़ाना। गीता जी आपने बहुत उम्दा बात लिखी, और इसके पहले भी आपने ऐसा कुछ मेंशन किया था। वाकई में मजाक की एक सीमा होती है, उसका हमें जरूर पालन करना चाहिए, थैंक यू। और सोनू परवाना जी ने मेल किया है खालिसपुर ऊंच गांव महूना अमेठी से, उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करो। हम सही हो सकते हैं, लेकिन मात्र हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। वाह, बहुत अच्छी बात आपने लिखी, आज के मौसम से रिलेटेड है ये बात, और वाकई में हमें इसी तरह की कोशिश करनी चाहिए जो आपने संदेश दिया। सोनू जी, परवाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खूबसूरत सा मेल भेजने, संदेश देने के लिए। ऐमन नवाब जी का ये कभी संदेश आ गया है, और हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, सुगंध माटी का प्रोग्राम बहुत अच्छा किया आपने, और संदेश ये है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता। लिखती हैं, बीमारियों को कहें अलविदा, अपने आसपास सफाई रखें, और खाने से पहले हाथ धोना ना भूलें। जी बिल्कुल, रोज़ की प्रैक्टिकल सी बात है, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। वाह, और अनवारुल सर और राखी जी की जोड़ी हम मिस करते हैं, और गुड मॉर्निंग के साथ साथ इन्होंने संदीला से एमन जी ने हमें मेल किया है, और आपका संदेश भी प्यारा, आपकी बात भी बहुत प्यारी, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। नजीम रेन, इनका दिल्ली से, इन्होंने इंद्रलोक से लिखा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मौसम सुहाना हो रहा है। तो नजीम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए, आपने समय निकाला, दिल्ली से मेल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक मेल करने के लिए। और समय क्या कह रहा है वो भी देखेंगे, लेकिन उसके साथ किसका फ़ोन कनेक्ट हो सकता है वो भी जानेंगे।

0: और ये गाना तो बहुत ही खूबसूरत सा है, लेकिन एक बहुत ही प्यारी सी आवाज भी हमसे जुड़ गई, हमारे रेगुलर लिस्नर है। नमस्कार, हेलो
1: हेलो,
0: जी, आपका नाम बताइए।
1: जॉली बोल रहा हूँ,
0: जॉली
1: नगर आलमबाग लखनऊ से।

0: लखनऊ से ज्वाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा आप नेटवर्क एरिया में आए और रेडियो से दूर हो जाइए, ठीक है?
1: हाँ जी
0: जी जी कैसे हैं आप ज्वाली जी?
1: बस ठीक है जी।
0: जी जी बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, बस यही हमारी कामना है। ज्वाली जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? चूंकि 11:56 हो गए, तो छोटी सी बात कुछ आपकी।
1: हाँ, थोड़ा शायराना अंदाज है।
0: जी जी
1: सुबह की बोर, सुबह की चिड़ियों की चहचहाट सुनकर मैं अपने घुटन भरे कमरे से निकलकर पंखा और कूलर बंद करके अपने आंगन की छत पे हवाले से चला जाता हूँ।
0: जी,
1: और इससे बिजली की 2 घंटे की बचत हो जाती है और मेरे इक्विपमेंट को भी आराम मिल जाता है।
0: बहुत बहुत बहुत अच्छी बात है ये, जो सुबह की बगिया में आपका घूमना, वहां का आनंद उठाना और मौसम के साथ

0: सुबह की चिड़ियों की चहक चहचहाट सुनकर मैं अपने घुटन भरे कमरे से निकलकर पंखा और कूलर बंद करके अपने आंगन की छत पे ठंडी हवा लेने चला जाता हूँ
1: जी।
0: और इससे बिजली की 2 घंटे की बचत हो जाती है और मेरे इक्विपमेंट को भी आराम मिल जाता है।
1: बहुत बहुत बहुत अच्छी बात है ये, जो सुबह की बगिया में आपका घूमना, वहाँ का आनंद उठाना और मौसम के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, साथ में बिजली की बचत करना, ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा संदेश आपके शायराने अंदाज में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लंबी बात करते हैं लेकिन वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर के शालिनी बिल्कुल तैयार है, कुछ घंटे आप लोगों के साथ रहेंगे। तो जॉली जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और बस इसी बातों के साथ जितने लोगों ने मेल किया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इसके साथ जिनका फोन कनेक्ट हुआ उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रयास किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ना शुक्ला कहती है इसी तरह से 100.7 FM रेनबो से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री एक समारोह में 15 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा संबंधित प्रतीकात्मक कार्ड दिए। इसके अलावा उन्होंने 10 करोड़ विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी हेतु उनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रति विद्यार्थी 1200 रूपये का अंतरण किया। समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों को सम्मानित भी किया गया। जनपद हमीरपुर में वृक्षारोपण महाअभियान एवं वन महोत्सव के अंतर्गत आज पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सिटी फॉरेस्ट मंजूपुर वन नगर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद वासियों से अधिक पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। जिन तीर्थयात्रियों का पंजीकरण नहीं हुआ है उनसे आग्रह किया गया है कि वे अपनी यात्रा तिथि की प्रतीक्षा करें। परामर्श में कहा गया है कि पंजीकृत यात्रियों को उनकी निर्धारित तिथि से पहले यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृति का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। भारत और इंडोनेशिया ने सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवाद संगठनों सहित विश्व स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैश

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

4:44 शालिनी आ चुकी है चटपटी बातें लेकर, और आज खाएंगे भी और साथ में बढ़िया गरम गरम चाय भी पीने वाले हैं। लेकिन ना सच वाली चाय नहीं पियेंगे, क्योंकि ये समय चाय पीने का नहीं है। इस समय तो आप सैलेड फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि लंच के पहले ये सारी चीज़ें खाना बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। लेकिन जो आज चीज़ें हम बनाने वाले हैं, हाँ आज क्यों बनाएंगे, क्योंकि आज है वेडनेसडे, बुधवार, जिसमें आज हम रेसिपी बताते हैं आपको। तो वो उन चीज़ों को आज हम नोट डाउन कर ले और इसे हम इवनिंग स्नैक्स में ले जा सकते हैं, और उसके साथ जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं वो आप एड ऑन कर सकते हैं, है ना। तो बस करना क्या है आपको, एक कागज उठाना है और कलम ले लेना है, कागज कलम दवात लो, लिख दो पिया ना भैया, ये नहीं करना है आपको, किसी को लेटर नहीं लिखना है, बस उठाना है जो चीजें हम बताएंगे, जहां पर आपको ना ऐसा लगे कि ये याद नहीं रहेगा, उसे नोट डाउन कर लेना है। जी हाँ, तो बस आपको हम समय दे रहे हैं अपने लिए सारी चीजें तैयारी करने के लिए। अगर आप कहीं बिजी हैं तो वहां से दूर हटकर रेडियो के नजदीक आ जाएं, ताकि आप रेसिपी नोट कर सके ना। देखिए, हमारी मम्मी दादी नानी कहा करती थी ना कि किसी के दिल में जाने

के लिए जो रास्ता है ना, वो पेट से होकर गुजरता है, तो हमें दिल तक पहुंचना है और वो रास्ता हम बताएंगे आज आपको। बस आपको सही सही जो जो बताएं वो करना है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा से ट्रैक और उसके बाद स्टार्ट करते हैं चटपटी वाली बातें।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
5: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: तौल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, मिट्टी की खुशबू और कुछ गर्मा गर्म खाने की इच्छा लेकर आता है ना। और ऐसे मौसम में अक्सर क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता, डाइट वाइट सब हमारी किनारे हो जाती है। तली भुनी चीजें खाने में पसंद आती हैं, चाय कॉफी की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब चाय कॉफी की मात्रा उस तरह से नहीं कि जो बनाने में मात्रा बढ़ाई जाती है, जो उसकी गिनतियां हैं उसकी बढ़ जाती हैं। जैसे हम कभी एक या दो पीते थे, हम बारिश में होता है चलो अच्छा चाय हो जाए, तो इस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन आपको पता है, अधिक तेल वाला खाना जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आप कह रहे होंगे, शालिनी इसमें आपने क्या नई चीज बताई, ये तो सभी को पता है। इसीलिए तो हम स्वाद और हेल्थ दोनों को ध्यान में रखते हैं और साथ ही साथ जो घर पे आसानी से बन जाए ऐसी डिश को सेलेक्ट करके लाते हैं। तो आप जानते भी होंगे बनाना, कोशिश भी करते होंगे, लेकिन जब हम यहाँ से अप्रोच करते हैं ना कि नहीं एक बार ये बना कर देखिए, तो एक बार माइंड में क्लिक तो जरूर करता होगा कि चलो आज ये बताया गया था तो इसको बनाते हैं। तो मूंग दाल का जो चीला है ना, वो बहुत आसान होता है बनाने में और गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और साथ ही साथ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, मूंग दाल चीला की जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, डाइजेस्ट करने में ये बहुत आसान होता है और साथ ही साथ वेट कंट्रोल में भी ये हमारी हेल्प करता है और लंबे समय तक पेट भरा महसूस करता है। तो बस फटाफट आज इसे बनाना है। कैसे बनाना है, एक कप आपको धुली हुई मूंग दाल ले लेनी है, जिसे 4-5 घंटे आपको पहले भिगोनी होगी। ये नहीं कि अभी भिगोया और अभी बना लिया। तो अगर आप शाम के स्नैक में नाश्ते में चाहते हैं कुछ अच्छा चटपटा खाना, तो ये काम अभी कर सकते हैं। एक कप मूंग की धुली दाल लेकर उसे अच्छे से साफ कर पानी से धुल कर भिगो दीजिए। बस तो इतना काम करिए और सुनिए ये प्यारा से ट्रैक, उसके बाद हम बताते हैं आगे की रेसिपी।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद और मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
0: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेडियो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: की बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: कर ली ना तैयारी? मूंग की दाल भिगो दी गई है, वाह क्या बात है। तो अभी तो लंच की तैयारी कर रही है, और लंच को टाइम दीजिए, लेकिन दाल भिगो कर पहले से रख दीजिए, और जब आप फ्री हो जाए थोड़ा सा रिलैक्स करें, उसके बाद बाकी की तैयारी कर लें। जैसे एक बारीक प्याज काट कर रख लें, और उसके बाद शिमला मिर्च काट के रख लीजिए, हरी मिर्च, हरी धनिया, और थोड़ी सी अदरक है अगर आपके पास तो भी डाल सकते हैं, और नमक आपके टेस्ट के अनुसार, और उसमें आधा चम्मच जीरा डाल लीजिए, और जो तेल आप या घी खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, बटर इस्तेमाल करती हैं, उसे आपको लेना है। और तब तक हम बता देते हैं कैसे आपको क्या करना है। भीगी हुई दाल जो है उसे अदरक और हरी मिर्च डाल के साथ में पीस लेना है। मिक्सी में आप डाल लीजिए और पीस लीजिए उसे, और जब उसका पेस्ट थोड़ा सा बैटर बताते ना गाढ़ा है, उसे गाढ़ा रखना है, पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है। फिर उसके बाद उसमें जो आपने प्याज काट के रखा है, जो शिमला मिर्च काटी है, हरी धनिया है, जीरा है, नमक है, सब कुछ आपको उसमें मिला लेना है। चिला का बैटर तो आप जानते होंगे, उसे कितना थिक रखना है, कितना पतला रखना है, ये आप खुद उस समय देख कर तय कर ले, इतना कि वो गर्म तवे पर आसानी से फैलाया जा सके, और ऐसा भी ना फैले कि वो फैल कर कहीं अलग चला गया हो और आप बना भी ना पाए। जब आप बैटर बना लेंगे, उसको तवे को गर्म करना है, उस पे तेल या घी जो आपको पसंद है वो लगाना है, बैटर को तवे पर फैलाना है, और थोड़ी देर जब वो सुनहरा एक तरफ का होने लगे, वो दिखने लगेगा आपको, और उसे फिर आसानी से पलट देना है दूसरी तरफ भी। और साथ ही साथ ऐड ऑन आपको क्या करना है, हरी चटनी, जिस भी चीज़ की को पसंद है वो आप बना लीजिए। दही के साथ भी इसको आप खा सकते हैं, और थोड़ा सा और अगर इसका टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आपके घर में पनीर रखा हो तो उसे भी कद्दूकस आप करके इसके ऊपर डाल सकते हैं, और इसको रोल बना सकते हैं कट करके, तो ये अच्छा सा है, बच्चों के लिए बहुत पसंद आएगा उसमें कि आपने उसमें पनीर डाला है। पनीर में भी जो आप प्याज कटा हुआ ये सब है मसाले मिला सकते हैं, और जब एक तरफ आपने बैटर को डाल दिया है, तवे पर फैला दिया है, जब वो थोड़ा सा लाल हो जाए तो आपको उसी ऊपर वाले सतह पे ही ये आपको जो ये आपने मिक्सर बनाया है ये वाला पनीर का, तो उसको उसको डालना है, और धीरे धीरे उसको रोल कर लेना है। तो जस्ट लाइक ना जो आपका रूल्स लेते हैं ना आप, बस उसी तरह का हो जाएगा, और उसे आप आसानी से खा सकते हैं। देखिए जब ये सारी चीज़ें बताती हैं तो जैसे लगता है कि बस सामने है और मिल गया है, और बस पेट भर गया, क्या स्वाद है, वाह वाह। और हेल्थ का भी ध्यान है, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, सभी लोग ये वाला खाना पसंद करेंगे। और अब हम आपको बताने वाले हैं क्या स्वीट कॉर्न और वेजिटेबल कटलेट बताना है। हाँ, ये थोड़ा सा हेल्थ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि बारिश के मौसम में गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न और वेजिटेबल कटलेट चाय के साथ खाने का जो मज़ा है ना, वो बिल्कुल अलग है। वैसे बाहर तो मिलते ही डीप फ्राइड होते हैं, लेकिन जो बाहर के कटलेट हैं उनकी तुलना में जो हम घर में बनाते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। उन्हें हमें फ्राई नहीं करना है, उसे हम थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा घी डाल के तवे पर हल्का सेक सकते हैं। और क्या करना है, हमें जो सीजनल वेजिटेबल है स्वीट कॉर्न लेना है, और स्वाद बढ़ाने के लिए उन्हीं को सबको एक साथ मिक्स करना है। तो बताइए, देखिए ना, पोषण भी मिलेगा और टेस्ट भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये तो हम आपको गाने के बाद बताएंगे, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड इसमें क्या अच्छा है तो आपको बता दें, जो स्वीट कॉर्न्स होते हैं ना उसमें ऊर्जा और फाइबर जो है बहुत अच्छे से होता है। और अगर हम इस कटलेट में गाजर भी इस्तेमाल करने वाले हैं, उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, और कम तेल से बनेगा, इसलिए ये हेल्दी स्नैक्स होगा, और जो कटलेट है वो भी बच्चों और बड़े बुजुर्ग सभी को पसंद आता है। तो बस इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, ये इस गाने के बाद।
1: भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग।

बजकर 41 मिनट और 43 सेकंड का वक्त हो चला है। प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ लेकर टेस्टी वाली बात। और हमने अभी मूंग दाल चीला बनाया और अब हम स्वीट कॉर्न वेजिटेबल कटलेट बनाने वाले हैं। और हमें क्या क्या सामान लेना है, 1 कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न लेना है, 2 उबले हुए आलू लेने हैं, 1/2 कप कद्दूकस की हुई गाजर लेनी है। अगर मिल जाती है आसानी से तो आप ले सकते हैं, या तो नहीं भी ले सकते हैं। आपको बारीक कटी हुई शिमला मिर्च लेनी है, 2-3 बड़े चम्मच ओट्स पाउडर आपको ले लेना है, या तो आपको ब्रेड क्रम्स मिल जाए तो भी चलेगा, 1 छोटा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लेना है, 1/2 चम्मच जीरा लेना है, 1/2 चम्मच चाट मसाला लेना है, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक आपको अपने टेस्ट के अनुसार, और साथ ही साथ थोड़ा सा ऑयल, तेल या घी, जो भी आप खाने में पसंद करते हैं, इतना सब लेना है। और अब आपको क्या करना है, उबले हुए आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, जिसको कहते हैं भरता बना देंगे, भरता बना देना है। फिर इसमें आपको स्वीट कॉर्न, गाजर, शिमला मिर्च और ओट्स पाउडर और जितने मसाले अभी हमने बताए ना, सबको एक साथ मिला देना है। और हाँ, स्वीट कॉर्न को अगर थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, हल्का सा थोड़ा सा, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और फिर जब सारी चीज़ें आपस में मिलाएंगे तो एक मिश्रण बन जाएगा, जिसे जो शेप आप देना चाहें, गोल देना चाहें, चपटा देना चाहें, ट्रायंगल का आकार देना चाहें, हार्ट शेप भी दे सकते हैं। कभी किसी खास के लिए जब हम कुछ बनाते हैं तो हार्ट शेप हमेशा याद आता है, तो उस शेप के लिए आपको तो अपना ही माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं, फिर आपको नॉन स्टिक तवे पर हल्का सा तेल लगाना है और उसी पर आपको दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकना है। और आप किसके साथ खाएंगे, हरी चटनी या दही के साथ आप खा सकते हैं, तो देखिए हेल्दी है ना ये। और साथ ही साथ आप इसमें थोड़ा सा पनीर भी मिला सकते हैं, तो और भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट बहुत आसान वाली चीज फिर हम बनाने वाले हैं। 12:44 और 14 सेकंड हो चले हैं, सुनते ही ये प्यारा सा ट्रैक और झटपट वाला हेल्दी खाना, टेस्टी खाना कैसे बनता है, नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे।

अब हम चटपटी वाली खिचड़ी बनाने वाले हैं। खिचड़ी का नाम सुनकर सभी को लगता है, अरे खिचड़ी क्या, हम बीमार हैं या हम बच्चों को कैसे खिलाएंगे। तो भाई हम चटपटी वाली खिचड़ी इसलिए खिचड़ी के आगे चटपटा लगाए क्योंकि ये बहुत अच्छी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, आप इसके ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। और बारिश के मौसम में वैसे भी हल्का खाना अच्छा रहता है, पेट भी भरता है और आपका पेट भी नहीं खराब होता है। ओट्स की खिचड़ी भी आप बना सकते हैं, मतलब ओट्स चावल की जगह ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी सेम रहेंगी। तो क्या करना है आपको, कई सारी दालें ले लेनी है, जैसे धुली मूंग की दाल ले लेनी है, चिकले वाली मूंग की दाल ले लेनी है और अरहर की दाल भी ले लेनी है। सारी चीज़ें एक साथ आपको धुल के थोड़ी देर पहले भिगो देना है और भिगोना इसलिए अच्छा होता है ताकि जो खाना बनता है वो बहुत अच्छा, मुलायम और बढ़िया और जल्दी बन जाता है। गैस की, ईंधन की भी बचत होती है। चावल अगर आप ले रहे हैं खिचड़ी में तो आप

चावल को भिगो दीजिए। चावल की जगह आप दलिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है क्या आप चीजें चाहते हैं। और इस समय लौकी, कद्दू, तुरई, परवल सारी चीजें आ रही हैं। ये सारी सब्जियों को ले लेना है। अभी भी आपको लग रहा होगा भाई कद्दू, तुरई, लौकी कौन ही खाता है, नहीं आपको खाना है इस खिचड़ी में डाल के। और टमाटर ले लेना है आपको, हरी मिर्च ले लेनी है, सब चीजों को काट के। और बहुत आसान है, पता है, आपने चावल दाल सारी जितनी बताई वो आपने वॉश कर ली, धुल ली, और एक कुकर में चढ़ाइए, सब्जी को बारीक काट लीजिए, थोड़ी सी अदरक भी आप उसमें डाल सकती हैं, काट लीजिए, सारी चीजें मिलाकर आपको प्रेशर कुकर में पानी के साथ इतना कि उसको कितना आपको थिक रखना है, थोड़ा सा पतला खाना है, थोड़ा सा गाढ़ा खाना है, मतलब कैसी खिचड़ी खानी है उसी हिसाब से आपको पानी डालना है, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालना है, और धीमी आंच पर चढ़ाकर भूल जाना है। मतलब भूलने का सेंस कि आप अपना काम करिए, खिचड़ी बनती रहेगी, धीमी आंच में कई सारी सीटी जब लग जाए उसके बाद आप उसका गैस निकलने तक उसका थोड़ी देर वेट करिए, उसके बाद फिर खिचड़ी खोलिए, देखिए क्या खुशबू है, उसको चलाइए मिलाइए। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि सब्जियां अलग दिख रही हैं, दाल अलग दिख रही है, चावल अलग दिख रहा है, तो उसको फिर से आप सिटी लगा लीजिए। और उसके बाद इधर तड़के के लिए चीजें आप ले लीजिए। अगर आप प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो उसको भी काट लीजिए बारीक, और जीरा, हींग के साथ में आप उसमें घी के साथ उसका तड़का लगाइए, सूखा मिर्च भी आप थोड़ा सा डालिए, और उसके बाद तड़का लगा कर बंद कर दीजिए थोड़ी देर के बाद। उसके बाद देखिए खोलिए क्या खुशबू है, वाह, आपकी हेल्दी वाली खिचड़ी एकदम रेडी है। और उसे आप चटनी और दही के साथ खाइए, और इसमें आपको पता है फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, लंबे समय तक ये हमें ऊर्जा देता है, और दिल की सेहत के लिए अगर हम माने तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो बस इस तरह से चीज़ें आप बना लीजिए, आसान भी है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, और साथ ही साथ बारिश के मौसम का आनंद भी लेना है, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। देखिए इतनी सारी चीज़ें बताई, 12:53:35 हो चले हैं, और अब आ रही है इस ऐसे प्यारे से ट्रैक की कि जिसका इस्तेमाल अगर हम खाने में करते हैं ना तो स्वाद बढ़ा देता है। चाहे आप कटलेट पे भी उसका इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे खिचड़ी में भी ऊपर से डाल के इस्तेमाल कर लीजिए। क्या है वो चीज? हाँ, नींबू। तो बस निमुड़ा वाले गाने के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर करते हैं वाइंड अप, इस उम्मीद के साथ कि आज आपको जो रेसिपी बताई वो आपको पसंद आई होंगी। नेक्स्ट प्रोग्राम ओ चुप तेरी बात में शालिनी रहेगी आपके साथ।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। दोपहर के श्रोताओं 1 बजे हैं और अब आप सुनेंगे अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुरोध गीत में और साथी गीजे स्वीकार, हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज पहला पत्र आप सभी का हम तक पहुंचा है, करगैना बरेली से है, मनकारा मंदिर से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती भारती, रवनक, शगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह का। बक्सरिया फरीदपुर बरेली से हैं राम प्रसाद तोमर, मुरली देवी, मनोरमा देवी, भाग्यवती तोमर, रक्षपाल राठौर और बिट्टू तोमर का। बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, अमान भारद्वाज, महीपाल, प्रदीप पाल, नमन, संतोष, नितिश और सोनू। दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार का। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ का। रथ चौक जिला जलगांव से हैं सन्नी मुन्ना, बंटू दादा, रविंद्र

सोनार, नरेंद्र डंगवाल, संतोष कुमार और प्राण तलाब डुमराव से हैं वली उल्लाह अंसारी, अरमानाज अंसारी और इनकी बेटी सोनम, सारंगपुर बक्सर से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा बिहार दिल्ली से हैं डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी, छटिया पोखरा डुमराव से हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुविया नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला से हैं आप सभी लोग गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरजश्री यादव का, मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बुट्टू भैया सासदरानी और हीना कौसर का, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ततरेंगी से हैं भागवत वर्मा, लेवई से हैं गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से हैं विश्वनाथ साहू, शरडोगरी बरिया से हैं दुर्गाराम साहू। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है बलमा और इस गीत को गाया है आशा भोसले और नितिन मुकेश ने।

0: रोग नियंत्रण अभियान, घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है, संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
0: ध्यान रहे, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सक की सुविधा।
1: 5 से 31 अक्टूबर तक चलेगा ये अभियान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800180 5145 पर कॉल करें।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी का। औरंगाबाद से हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश का। डाबर तालाब लोनी से हैं रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा का। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हरिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, मुस्ताबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। ग्राम अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज ठाकुर, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर का। लच्छनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक। मोपका भट्टापारा से हैं भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा साहू। फूलबाग किला छावनी बरेली से हैं विशन दत्त भारद्वाज, शिव दत्त, गंगा दत्त, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी, शिप्रा, नीलम, मुन्नी देवी और श्री राम राठौर का। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। राजनांदगांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान। और जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। कुंज निवास धाकुंज इज्जत नगर बरेली से हैं

वीके जौहरी, विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पित जौहरी और शायना बीका। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है जाने होगा क्या और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत दिया है निखिल विनय ने।

संस्थान मेगा हार्ट्स यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप जो फरमाइश अपने पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं, इन पत्रों में आपका छुपा होता है प्यार, और हम आपकी वो फरमाइश जो है पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में ये पत्र हम तक पहुंचा है, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से हैं, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हैं, दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लवि श्रीवास्तव का। वजीरगंज जिला बदायूं से हैं, प्रेम कमल वाष्णेय, सुशीला कमल वाष्णेय, प्रभात अमरीश, सलोनी सचिन, नीरू देविका, कार्तिक वेदरिचा और ऐश्वर्या कमल वाष्णेय का। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं, बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला और गायत्री। खुर्दी रोड मानपुर से हैं, विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और गैंगटा काशी धर्मपुर बरेली से हैं, फहीम खां, सिद्दीक अली, साबिया। दूने नगर से हैं, ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया। मौला तलैया उड़ला जागीर से हैं, फजरुद्दीन भाई, अब्रार भाई, अफजाल भाई और राम प्रसाद शर्मा का। गांव चौहलादा बागपत से हैं, संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। मौला गड़ैया बरेली की मस्जिद के पास से हैं, मोहम्मद कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेद, रजिया और बेबी का। मिलक भूजपुर आशा जिला मुरादाबाद से हैं, बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन और शहजाद हुसैन। कृष्णा टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से हैं, नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है कल की आवाज़ और इस गीत को गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने।

मेगाहर्ट्ज़ यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हां, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है 100.4 FM और सुन रहे हैं अनुरोध गीत। और बेरेडी से हैं आप सभी लोग हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर का। ग्राम बठेना पाटन से हैं बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली शिवम, चटौदा सारागांव से हैं सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा का। बलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जैमुनिशा बेगम, अक्रम सैफी, आबाद खान। और जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं ग्राम बहरामपुर से त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। बहड़ी से हैं अंजुम भाई और खालिदा बेगम। बैली जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, मोहनलाल, सोनू, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, प्रदीप पाल और नमन का। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर पार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति का। लच्छनपुर से हैं छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनक्ष और आरू साहू का। ग्राम बगबड़ोपा पथरिया से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। और खमरिया बिलासपुर से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप बुगलानी, जगमोहन प्रजापति। पिपरपारा, पालचुवा, मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन, वंशिका दिवाकर का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है अनुरोध गीत में आप सभी का। ग्राम रट्टे नगला से है, अलीगंज से दीपक शाके, ज्योति शाके, अंकित, पूजा, सक्षम शाके, परी महल कासगंज से है आवाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नबील, असलम सैफी, गंज डुंडवारा से है शमसुल कमर राही, झालावाड़ राजस्थान से है हर्षिता, रामेश्वर कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई, प्रभुलाल बागड़ी, मरोट कैंप पंजाब से है सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी, गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से हैं राजीव सेतिया, रजनी सेतिया और आरती सेतिया, साथी हैं तनिष सेतिया, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत घबड़ाकर राही, सरिता घबड़ाकर, सिद्धांत घबड़ाकर, प्रिंस एकांश घबड़ाकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं शैलेज घबड़ाकर, वैशाली, श्वेता सुमित घबड़ाकर, ध्वनि घबड़ाकर, आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा, छत्तीसगढ़ भाटापारा रतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा, अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर।

उत्तर प्रदेश से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद, और सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है पंकज उदास और अनुराधा पाडवाल के स्वर में फिल्म बाहर आने तक का ये गीत, और संगीत दिया है इसमें राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है बाहर आने तक।

और श्रोताओं, अब अनुरोध गीत की आखिरी पेशकश आप सभी की फरमाइश पर। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से हैं आप सभी लोग। बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा का। करगेना करेली बरेली से हैं गणेश कुमार, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, युवराज शर्मा, इशिता, वीर, संदीप शर्मा, चंचल, सूरज शर्मा, चिंकी, अबरार अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी। दसमले चौक परतूर जालना से हैं जय श्री दसमले, शिवानी, अर्चना काटे, आकांक्षा काटे। मस्तानपुरा ता पूर्णाचे से हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, लोचना भगत और चेतन कुमार भगत। साथी हैं सुधाकर दारजी सरजे, सौरभ दसमले, सुरेश अप्पा दसमले और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। गांव कुमार हिडा जिला सहारनपुर से हैं आप सभी लोग सैयद मसरूर, गुलजार जहां, अजहर हसन, इब्राहिम और नाजिया आफिया का। वीरम गांव गुजरात से हैं अजीत भवसार, भावेश, सनी, हेतल, कृष्णा, जैमिन भवसार। बटिंडा पंजाब से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और उनके परिवार के सभी सदस्य। कस्बा शीशगढ़ से हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक। तिलसी बदायूं से हैं रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन अलवी, जानकी अलवी, जानवी अलवी, हानिया, निजाकत, शाहीन, अहिल बाबू और आदिल अलवी का। गंज डुंडवारा से हैं मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्जा नस्ट्री।

बबली, अरबाज खान, शहबाज खान, पप्पू भाई, अफसाना बेगम, मैं जबी शेख और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से हैं। दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान जवेदपुर बड़ा बांबो गांव सुपाई साई से हैं। देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी का अजीत नगर मलोट पंजाब से हैं। छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर छावनी अशरफ खां मंदिर के सामने से हैं। आप सभी लोग राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा वंश, छोटी गौरी काकू, रीता, विनोद कुमार और उनके परिवार के सभी सदस्य मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बिसलपुर जिला पीलीभीत से हैं। विमल वर्मा, विनय वर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्य करुला मुरादाबाद से हैं। अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान और सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं। जीशान वारसी, रेहान शेख और इमरान शेख बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास से हैं। चनेठी बरेली से विनेश कुमार और रागिनी श्रीवास्तव साथी हैं मुस्कान। और ये पत्र हमारे पास पहुंचा है आप सभी लोगों का छत्तीसगढ़ से हैं, ग्राम बुड़गहन से। राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति का आप सभी लोगों ने पसंद किया है। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म करण अर्जुन का ये गीत जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, शब्द रचना है इंदिवर की और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, आप गीत जरूर सुन रहे हैं जाती हूँ मैं, लेकिन अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम 100.4।

श्रोताओं, आप गीत जरूर सुन रहे हैं जाती हूँ मैं, लेकिन अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम 100.4 FM पर। और अगर आप भी और लोगों की तरह हमें पत्र भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम द्वारा के निदेशक, अनुरोध गीत, आकाशवाणी बरेली, और पिन संख्या है हमारे यहाँ 2430001। तो ध्यान रखिएगा, अनुरोध गीत में आपने पसंद का गाना लिख करके, हम तक अपने नाम लिख करके फरमाइश आप भेज सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी गीत आप सुन सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। दोपहर के 2 बजे हैं और अब समय हुआ है रस रंग का, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये गज़ल। और इस गज़ल को गाया है रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर ने।

श्रोताओं, अभी आपने ये गज़ल सुनी रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की स्वरों में। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस रंग।

वो जुलेखा तो यूसुफ पे शैदा गई, वो जुलेखा तो यूसुफ पे शैदा गई, मैं तो अपने नबी के कुर्बान गई ना, तेरी हर एक अदा पर, तेरी हर एक अदा को पहचान गई ना। श्रोताओं, भी आपने ये कव्वाली सुनी ज़हीर अहमद ख़ान और साथियों की आवाज़ों में।

0: मिलेगा तो सवर जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारा कहना तो यही है कि आपका प्यार मिलेगा तो ठहर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ठहर के फिर आपको आपके मनोरंजन की सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

फूल मुरझा गए आपकी चाह में, फूल मुरझा गए आपकी चाह में, मुस्कुराकर इन्हें फिर खिला दीजिए, यूं ना खामोश रहकर सजा दीजिए, आपके दिल में क्या है बता दीजिए। दोस्तों, चंदन दास के स्वर से सजी गजल अभी आपने सुनी। इसी के साथ रस रस कार्यक्रम, रस रंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। दोपहर के 2:30 होने को है। आइए आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

हम सुन रहे थे आशिक फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, अपना बना के देखो फिल्म से, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल और रवि के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी

0: कि कंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बात एक रात की फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत।

0: हम सुन रहे थे कैलाशपति फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, इसे लिखा और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
3: जी।
2: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक बेटी की यादों में उसके पिता
5: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
4: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
5: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
4: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
5: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
6: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और

0: यहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत, आजाद फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के हैं बोल और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। और इसी गीत के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को। नमस्कार।

0: ही सहेली।
1: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को नमस्कार।
2: नमस्कार चंचल, आपको भी और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है चंचल?
1: हाल बहुत अच्छे हैं। और देखिए ना, कितनी बार हम है ना शिकायतें बहुत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो हम शिकायत करते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है। तो ये जो शिकायत करने का हमारा एक आदत जो बन चुकी है, अच्छा हो रहा है तो भी शिकायत, अच्छा ना हो
2: तो भी शिकायत। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों देखिए ना, हमारे मुंबई में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, हमें शिकायत है कि ओहो इतनी बारिश, कैसे जाए, कहाँ जाए, और आप ही की तरह चंचल हवाएं बह रही हैं। बड़ी मुश्किल में है हम लोग, और लगता है कि अरे

0: कैसे क्या होगा, लेकिन बाहर कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर आश्वासन दिए गए कि भी बारिश आने वाली है,
1: हाँ
0: लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी है।
1: बिल्कुल, तो होता यही है कि शिकायतें भी हैं, आश्वासन है, और आश्वासन पूरे हो गए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, फिर कई बार हमारे मन से शुक्रिया भी निकलता है, लेकिन ना हो हमारी मनचाही बात पूरी तो झट से हम शिकायत करने लगते हैं, ये एक मानव स्वभाव ही कह लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में आपका या मेरे और सुनने वालों का ये मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा। बिल्कुल,
1: इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को जिसमें वो अपने विचार हमें लिखकर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए और क्या शिकायतें उनके मन में रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट, और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात, अपने जज्बात, अपने भाव, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना, मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं,
1: बहुत
0: वरना
1: बात कही।
0: बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर चौराहे पर छोड़कर अलग हो जाते हैं।
1: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
0: बिल्कुल, तो आज आश्वासन पर आप बताइए हमारे श्रोता लोग की किन किन को आपने आश्वासन दिया, या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं।
1: बिल्कुल, और साड़ियों का संसार, इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी जो बहुत फेमस है, कोटा डोरिया, उसके बारे में।
0: बिल्कुल, ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है, और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है इस साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो है कोटा डोरिया की साड़ी पहने भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी है चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती है।
1: तो हमारी कौन सी सखियां हैं जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है, और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती हैं कि उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए, तो वो क्यों चाहती हैं ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें।
0: अच्छा।
1: इसमें चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है, नी डोसा होता है, अनार से जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है, चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं, इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं, कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं। तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपनी सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: ये तो
1: जी, तो
0: गाना
1: बहुत
0: बड़ा अच्छा था, है ना?
1: बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
0: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन यूं ही हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं, चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं,
1: क्या बात है।
0: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है,
1: अरे
0: उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है।
1: आहा,
0: सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं, रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन, जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहें, चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती
1: क्या
0: रहें।
1: बात है, क्या बात है, यानी हमारी सखियों को, हमारे सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है
0: बिल्कुल, ये जो
1: ना
0: और ये जो सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं, हम उसे पूरा महसूस कर
1: कर
0: पाते हैं,
1: सकते।
0: हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो,
1: हाँ
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे, अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और उद्घोषक जो खास तौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है, तो
0: जी
1: हमारी श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं
0: जी
1: कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते भी, और हमें भी अच्छा लगता है
0: जी
1: जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने
0: जी
1: का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां अपनी अपनी
0: हाँ
1: तारीफों में उलझ गई है ना। तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें, बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए। हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, हमने बात को जिस तरीके से कहा, अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है,
1: बिल्कुल
0: इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते
0: जी
1: हैं तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं
0: जी
1: तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
0: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है, गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है, और शुकराना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
1: क्या बात
0: क्या
1: है।
0: बात है,
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा। धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास।

0: है। कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारे सभी सखियां और सखा तो कवि बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है ना?
1: और इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते। हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है। आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं, ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीजें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नजरिया है वो भी खराब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
1: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना करते कि भाई गाना नहीं सुनवा रही है सखियां, सिर्फ बातें किए जा रही हैं, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
0: चलिए

0: चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी
1: बिल्कुल
0: हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा। हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को,
1: जी,
0: उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, ना कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि
0: बिल्कुल
1: हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा है।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते। लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता, हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाती, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना
1: इसी तरह
0: चाहिए।
1: से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं।

0: सबके शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं, और शुक्रिया अदा करने वाले तो जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है, और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है, तो शिकायत किस बात की। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं। ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्मपत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
1: बिल्कुल बना देती है। लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी, ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
0: तो अभी गीत सुन ले।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था, जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 3:30 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो

0: वो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे। गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने।
0: जी
1: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही।
0: जी
1: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
0: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
0: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
0: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
0: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
0: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं। लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओं आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहाँ लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वुमेरा,

0: की मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया वो देखने में कैसे लगते हैं।
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना

0: क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।

0: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
1: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
0: अच्छा अच्छा।
1: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
2: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
1: जी।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
2: वाकई कमाल है।
1: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
0: सचमुच?
2: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
0: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
1: लीजिए, ये आपका हुआ।
0: इसकी कीमत?
1: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
2: सच?
0: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही,

0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
1: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं। वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
2: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आपके साथ इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करने, जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आज का टॉपिक है कोई घटना जो आप कभी नहीं भूलना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं हमारे श्रोताओं की कौन सी ऐसी घटना है जो वो कभी भी नहीं भूलना चाहेंगे। हेलो,
6: हेलो, नमस्कार
5: जी। नमस्कार, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
6: मैं सुनील कुमार, जिला बरेली से बोल रहा हूँ, कैंट स्टाफ कनेडा से।
5: कैसे हैं सुनील कुमार जी?
6: बढ़िया है मैम, आप कैसी हैं?
5: जी, सब लोग बढ़िया हैं, और मौसम आज का अच्छा हो गया है तो कुछ गर्मी से राहत भी मिल गई है ना?
6: मैम बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है, ऐसा ही रहे तो मजा आ जाए।
5: जी जी, मजा आ जाए। लेकिन सुनील कुमार जी, क्या कोई आपकी जिंदगी में ऐसी घटना हुई है जो आप कभी भी ना भूलना चाहें? जिसे
6: ऐसी घटना है, हम गए आप भी जानते हो संजय कृष्णन अस्पताल पास दवाई लेने, तो जो हमें जरूरत थी वो दवाई नहीं थी, तो विचारों में हमारी फीस वापस कर दी, तो वो हम कभी नहीं भूलते। अब भी याद करते हैं कितने अच्छे डॉक्टर साहब हैं जो मतलब पैसा हमारे वापस कर दिए, जबकि हमारी कोई जान पहचान नहीं।
5: जी जी जी, बहुत सारी नेकियां ऐसी होती हैं जो लोग नेकी करके भूल जाता है, लेकिन जिसके साथ जो उपकार किया गया होता है वो इंसान जिंदगी भर याद रखता है। और इस आपकी घटना से और जो लोग हैं और जो हमारे श्रोता हैं, उन लोगों को भी बहुत ही एहसास हुआ होगा कि ऐसा अगर हम भी करें तो लोग हमें भी जिंदगी भर याद रखेंगे, है ना?
6: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही काम करना चाहिए जो हमें याद रखेंगे।
5: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई सुनील जी, और एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया आपकी घटना से, हमारे सारे श्रोताओं को मिला ये मैसेज। और अब आप अपनी पसंद का गीत बताइए, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
6: गोपी कृष्ण का सुना देना, छतरी ना कोल बरसात में, भीगी आने दे भीगी रात में।
5: लीजिए आप सुनिए अपने घर में अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम। जी
0: नमस्कार। आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन और कहाँ से?
1: मैं मंसूरी क्लब ग्राम मैथुरा तहसील ग्राम प्रजा सखावत हुसैन बात कर रहा हूँ।
0: मंसूरी क्लब से सखावत हुसैन।
1: जी, ग्राम
0: कैसे
1: मैथुरा।
0: हैं जी? कैसे हैं सखावत जी?
1: जी मैम, बढ़िया है। आप सुनाइए।
0: सब बढ़िया है? क्या करते हैं सखावत जी आप?
1: जी, हम किराना की दुकान पर बैठे हैं, किराना ही दुकान चलाते हैं मैम।
0: अच्छा, किराना की दुकान चलाते हैं आपकी। मुझसे पहले भी बात हो चुकी है ना
1: जी।
0: जी। अच्छा सखावत जी, कोई ऐसी घटना है आपकी जिंदगी की जो आप कभी भी नहीं भूलना चाहेंगे, या अगर भूलना चाहें भी मगर आपके दिल में याद रहती है वो चीज़?
1: हम छोटे थे तो हमारे पिताजी गुजर गए थे, तो वो घटना अभी भी याद रहती है कि हम छोटे थे
0: जी
1: और अभी तक मतलब याद ही रहती है। वो जाती थोड़ी है कोई, जब हम मतलब
0: जी
1: काम भी नहीं करते थे उस टाइम। जी
0: अच्छा, वाकई जो बाप की कमी है, मतलब माँ

0: और बाप की जो कमी है वो जिंदगी भर इंसान को महसूस होती है। ये घटना एक ऐसी होती है इंसान की जिंदगी में जो कभी इंसान भूल नहीं पाता है ना। सखावत जी, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनवा दें हम आपको?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है और गाने के बोल भी यही है। जी मैम, अगर कोई दोस्त के नाम लेना चाहूँ,
0: जी बिल्कुल लीजिए।
1: जी छोटा भाई तालिब हुसैन मंसूरी और लहीद मंसूरी, तौफीक मंसूरी, सरफराज मंसूरी और ये कस्बा सिंधौली से इमरान शेख जी भंडारी।
0: लीजिए, सुनिए अपने दोस्त और भाइयों के साथ अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है।
1: हाँ मैम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोरिया, तहसील नवाबगंज, बात बरेली से ही बोल रहे हैं। मैम जी, मुनव्वर जहां जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार। कैसे हैं राजेंद्र जी?
1: बस ठीक है मैम जी, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं मैम जी।
0: जी बिल्कुल, सबसे अच्छी तो खुशखबरी यही होती है कि स्वस्थ है। आज के टाइम में अगर कोई ये कहे कि हम स्वस्थ है तो बहुत खुशी की बात होती है ये चीज भी।
1: हाँ मैम जी, क्योंकि हर किसी को स्वस्थ रहना चाहिए, तभी तो अपना काम हो पा

0: आएगा और कार्यक्रम सुन पाएंगे हम।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, जब स्वस्थ होंगे तभी मन लगेगा हर काम में, हर चीज में, मनोरंजन में भी। अच्छा एक राजेंद्र जी, एक बात बताइए, कोई घटना आपके
0: हाँ
1: जीवन
0: जी,
1: की ऐसी हुई है जो आप अभी तक ना भूल पाए हो या जिसे ना भूलना चाहें आप?
0: हाँ जी, ऐसी तो घटना हमारे जीवन में एक हुई है जो हम क्या भूलना चाहेंगे, वो तो हमारे लिए जीवन भर के लिए याद बनकर रह गई मैम जी।
1: अच्छा क्या घटना है, हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
0: हमारी घटना एक ऐसी है कि हमारी माँ जी ने हमें बताया था, हम तो इतना नहीं जानते थे कि 9-10 महीने के हम जब हुए थे तो
1: हाँ
0: हमारे ऊपर पहले लोग बोलते थे कि फालिस गिर गई।
1: अच्छा
0: हाँ जी, जिसे बोलते हैं पोलियो हो गया। बस वो ही हम घटना नहीं भूल सकते जो आज तक हम अभी उसी से परेशान है, क्योंकि पैरों से हमें थोड़ा कम चल मिलता है मैम जी।
1: अच्छा अरे ये तो आपने ऐसी घटना बताई जिससे हमारा दिल ही शोक में डूब गया, बहुत ही दुख हुआ। लेकिन इंसान को कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, और आप माशाल्लाह, आपकी बातों से लगता है आप जिंदा दिल इंसान हो। और जैसे कि आपने शुरू में ही कहा था कि मैं स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, कितनी अच्छी बात आपने कही थी। हालांकि आप इस पोलियो से ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को खुश रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है ना, अच्छे से रहना
0: हाँ जी,
1: चाहिए, खुश रहना चाहिए।
0: ये तो बात सच है मैम जी। लेकिन सबसे बड़ा तो एहसान हमारी माँ का है जो उन्होंने इस लायक बना दिया कि थोड़ा चलने लगे। हमारी माँ ने बहुत भागा दौड़ी की है, तब जाके कहीं
1: जी
0: थोड़ा चलने लायक हुए हैं मैम।
1: जी जी जी माँ और बाप के जो एहसान होते हैं ना, वो बच्चा जिंदगी भर चाहे उस एहसानों का बदला करता रहे, लेकिन जिंदगी भर नहीं चुका पाता है ना। ये
0: हाँ जी,
1: दो
0: ये तो बात
1: चीजें
0: सच है, अपनी माँ के माँ बाप के एहसान तो कोई नहीं चुका पाएगा, लेकिन जो
1: जी
0: आज की पीढ़ी है वो तो माँ बाप को तो भले बुरे कहते रहते हैं, लेकिन ये
1: जी
0: तो कहना गलत है मैम जी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। माँ बाप तो किसी सूरत से गलत हो ही नहीं सकते, है ना। जो अपनी औलाद के लिए
0: हाँ
1: भले से
0: मैम,
1: दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन अपनी औलाद के साथ बुरा होने नहीं देते हैं, है ना।
0: वो एक कहावत है कि आप खुद तो गीले में सोती हैं लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती हैं, वो तो कहावत ठीक है मैम जी।
1: जी वो कहावत नहीं है, वो हकीकत है ना। वो
0: हाँ, वो
1: जिंदगी
0: तो
1: की
0: हकीकत
1: सच्चाई है एक माँ की, के खुद गीले में सोती है और बच्चों को अपने सूखे में सुलाती है। इसका मतलब ये है कि हर गम परेशानी दुख आपदा वो खुद सहती है और अपने बच्चे को हर दुख परेशानी से सेफ रखती है ना।
0: है। हाँ जी मैम
1: जी
0: जी,
1: आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: मूवी का नाम है बैराग, गाने के बोल हैं, मेरे पैरों में घुंघरू बना दे फिर मेरी चाल देख ले। हाँ
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये जो आपने सुनना पसंद किया है।
0: मैम जी, कुछ कुछ दोस्तों के नाम शामिल करना चाहेंगे मैम जी। भगवान
1: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए।
0: सिंह परमार जी हैं, सारून नूर अंसारी जी हैं, गंगाधर सावंकर जी हैं, सोनू जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, और लाइव जितना जितने श्रोता सुनेंगे सभी को सॉन्ग डेडिकेट रहेंगे। जाते जाते कभी कभी धोखा परिवार से भी मिलता है, इसीलिए अपनों के बीच में रहकर भी सोच समझ के रहना पड़ता है मैम जी।
1: जी बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और अब सुनिए अपने दोस्तों के साथ और सारे भाई बहनों के साथ ये गीत।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

0: मुखड़े होए होए जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले मोहलाले जले।
1: हेलो जी, कौन बात कर रही है?
2: मैं बरेली से बोल रही हूँ।
1: नाम क्या है?
2: नाम मेरा सिम्मी है।
1: सिम्मी
2: जी,
1: क्या करती हैं सिम्मी आप?
2: कुछ नहीं, घर पे रहती हैं।
1: कुछ नहीं, घर पर रहती हैं? घर पे तो बहुत काम होते हैं, ये कैसे कह दिया कुछ नहीं?
2: घर के काम करती हैं।
1: जी जी, घर के काम तो मेन ही होते हैं, क्योंकि इंसान की अच्छी परवरिश ही घर से होती है ना?
2: जी
1: जी। सिम्मी जी, कोई ऐसी घटना बताएंगे आप अपने लाइफ की जिसे आप कभी भी ना भूली हो और ना ही भूलना चाहती हो?
2: जी हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, मतलब जैसे कोई हादसा हो जाता है उसको नहीं भूल पाते हैं।
1: जी, आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा हादसा है जिसे आप नहीं भूल
2: नहीं,
1: पा रही हैं?
2: ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ अभी।
1: अच्छा, कोई खुशी की बात हो, जो बहुत सारी खुशियों की बात होती है कि इंसान वो बात नहीं भूल पाता है, उसे जब भी अकेले में भी बैठा होता है या गम में भी होता है, लेकिन वो बात अगर ध्यान होती आ जाती है, वो घटना, वो खुशी का मोमेंट, तो उसका दिल खिल उठता है।
2: जी जी, ऐसा हुआ, मतलब हम लोग घर पे जो रहते हैं, हम सिस्टर हैं, तो हंसी मजाक की बात होती है।
1: हाँ,
2: तो हम वो बातें याद करते रहते हैं।
1: अच्छा, वो बातें याद करती रहती हैं। कोई ऐसी घटना नहीं हुई आपके साथ जो कि आपको जिंदगी भर ऐसा लगे कि वो हमें जिंदगी भर याद रहेगी?
2: हाँ, मतलब हमारा, हम सिस्टर हैं, हम साथ रहना हमारा, हम सोचते हैं हम जिंदगी भर साथ रहें।
1: अच्छा, जिंदगी भर साथ रहे। तो आप
2: तो
1: लोग
2: तो छह की शादी हो गई ना, इस वजह से हम पहले मतलब साथ में रहते थे, हंसते थे, बोलते थे, खेलते थे, वो चीजें याद रहती हैं।
1: जी जी जी, सही बात है कि बहनों के साथ जो परिवार होता है अपना, भाई बहनों का, माँ बाप का, तो उस परिवार में जो खुशियाँ बांटते हैं, और जब बहनें पराए घर की हो जाती हैं तो वही सारी चीज़ें याद रहती हैं, है ना?
2: जी
1: जी, जी। आज सिम्मी आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
2: फसल हमको सुना देना कोई भी।
1: ठीक है, आप सुनिए अपने रेडियो सेट पे अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है।
1: अस्सलाम वालेकुम। मैं सना बोल रही हूँ रामपुर से।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सना?
1: जी मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं?
0: सब बढ़िया है, अल्लाह का करम है। क्या करती हैं सना आप?
1: जी मैं पढ़ाई करती हूँ। जी
0: पढ़ाई करती हैं? कौन से क्लास में हैं?
1: मैं
0: कौन से क्लास में हैं?

0: जी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ।
1: फर्स्ट ईयर में है, माशाल्लाह। तब तो आपने हाई स्कूल जो डराने वाला क्लास था बच्चों को, वो पास कर लिया है ना।
0: जी
1: जी सना, आप बताना चाहेंगी आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना हो जो आप अभी तक भूली ना हो या भूलना ना चाहती हो वो?
0: जैसे 5 साल बहुत बारिश हुई थी, मैं रामपुर में रहती इसलिए बहुत बारिश हुई थी रामपुर में, तो मेरी पूरी फैमिली एक साथ नहाई थी और बहुत हमने मस्ती की थी बारिश में। वो घटनाएं मैं भुलाना नहीं चाहती हूँ।
1: वो इतने अच्छे पल थे आपकी जिंदगी के, आपने अपनी लाइफ के वो पल संजो के रख लिए हैं और भुलाना नहीं चाहती हैं और उन्हें याद करती हैं, है ना? जी, बहुत सारी खुशियों भरे पल ऐसे होते हैं हमारे लाइफ के जो इंसान भूल कर भी नहीं भुला पाता, है ना? वो जिंदगी में याद रहते हैं।
0: जी, क्योंकि मेरी 4 सिस्टर है और फिर मेरा भाई आया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट कराया था और वो भी पल मैं भूलना नहीं चाहती हूँ।
1: जी, बहुत अच्छे पल हैं आपकी यादों में, और खुदा करे सारे श्रोताओं की यादों में अच्छे अच्छे पल, अच्छी अच्छी ऐसी घटनाएं हैं वो उनकी यादों में बसी रहें और अच्छे ही अच्छे से दिन और जिंदगी गुजरे। और आप बताइए सना, आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: वो लड़की नहीं, जिंदगी है मेरी।
1: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पे आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन बात कर रही है? तरन्नुम
1: जी, माँ नगर नई बस्ती बरेली से तरन्नुम अंसारी बोल रही हूँ।
0: अंसारी, कैसी हैं आप?
1: जी मैम, हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं।
0: सब बढ़िया है, अल्लाह का करम है। और क्या कर रही हैं इस समय तरन्नुम?
1: इस समय मैम गली का काम कर रहे हैं और बारिश हो रही है हल्की हल्की।
0: अच्छा, बारिश हो रही है आपके मौला नगर में?
1: जी हमारे गांव में बारिश हो रही है।
0: तब तो बहुत ही अच्छा लगता होगा, है ना
1: जी मैम, सुबह से आज बहुत अच्छा मौसम है। कुछ
0: जी?
1: देर में जैसे बारिश रुक जाती है, कुछ देर में होने लगती है।
0: अच्छा, मौसम है, कार्यक्रम सुन रही हैं और आपकी कॉल भी लग गई है। तो आप हमें एक बात बताइए, कौन सी ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी की जिसे आप अभी तक नहीं भूल पाई हैं या याद है आपको जो आज तक?
1: जी मैम, ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं जो नहीं भूल पाए, लेकिन भूलना पड़ता है। एक दो घटनाएं ऐसी हैं, कुछ शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे।
0: वो घटनाएं कौन सी हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज।
1: जी मैम, एक घटना ये है, अभी 2-3 साल हो गए, जैसे हमारे पड़ोस में ही लड़का था, उसका इंतकाल हो गया, तो बहुत बेरहमी से उसकी मौत हुई थी। तो ये बात हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि
0: अरे
1: वो हमारा खास इंसान था। खास
0: जी,
1: तो
0: बहुत
1: खैर
0: दुख की
1: पड़ोसी ही,
0: बात।
1: लेकिन जैसे जैसे
0: पड़ोसी से भी बहुत
1: खानदान से
0: अच्छे
1: बड़े
0: ताल्लुकात हो जाते हैं, और पड़ोसी तो सबसे ज्यादा मेन होते हैं, रिश्तेदार से भी ज्यादा करीब पड़ोसी होते हैं ना। और हम दुआ करेंगे कि आपकी लाइफ से क्या किसी की भी लाइफ में ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि इंसान को दिली सदमा, दुख या गम, या उसकी जान भी चली जाए, है ना
1: जी।
0: जी। तरन्नुम, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनवा दें हम?
1: जी मैम, आज मैं पुराना गाना सुनूंगी, हर चेहरा यहाँ चांद है, हर जर्रा सितारा, वादी कश्मीर ये जन्नत का नजारा।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए अपने रेडियो सेट पर अपनी पसंद का ये गीत।
2: हर चेहरा यहाँ चांद,

0: नजारा जन्नत का नजारा।
1: हेलो जी, कौन बात कर रही हैं?
2: जी मैं तक्षला बात कर रही हूँ बरेली से।
1: तक्षला खान
2: जी
1: कैसी हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुनव्वर जहाँ बात कर रही हैं ना?
1: जी मैं मुनव्वर जहाँ बात कर रही हूँ। क्या करती हैं आप तक्षला खान?
2: जी मॉडलिंग करती हूँ,
1: मॉडलिंग
2: ब्राइडल
1: करती हैं।
2: ड्रेसेस की।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप मॉडलिंग करती हैं, लोगों को तरह तरह से ड्रेसअप करती होंगी और, है ना?
2: जी।
1: जी
2: और मार्च में न्यू ड्रेसेस लॉन्च होते हैं तो उनको स्टेज पर हम लोग परफॉर्म करके दर्शाते हैं।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा तक्षिला जी, एक बात बताइए आप कि आपकी लाइफ की कोई ऐसी घटना है जो आप कभी भी ना भूल पाई हो?
2: वैसे तो मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं है, मेरी लाइफ तो बहुत हैप्पी रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि बरेली में कुछ ऐसी अफवाह फैला दी गई थी कि ड्रोन कैमरे से रिलेटेड कुछ चोर वगैरह जो होंगे वो दूसरों के घरों को देखकर उनको जानकारी निकालना है कि वो सो गए या नहीं सो गए, तो चोरी कर ले या कुछ भी कर ले, जो भी अफवाह बरेली में फैल रही थी। तो इससे रिलेटेड मेरी फैमिली तो बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरा घर काफी बड़ा है और कुछ खुला हुआ भी मेरा घर रहेगा, तो उससे रिलेटेड मैंने फिर अपने घर को कवर करवाया था और उसकी जानकारी निकलवाई थी कि ये चीज फेक है या फिर रियल है। जानकारी निकालने के बाद फिर फेक हुई, तो हम लोग बहुत ज्यादा बहुत हैप्पी और बहुत रिलीफ फील करा हम लोगों ने। फिर इसके बाद में इस सब
1: अच्छा
2: चीजों से हटके हमने बहुत हैप्पी फील करा और वो चीज जो है मुझे अभी तक याद है।
1: अच्छा लेकिन तक्षिला, घटना जो होती है वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है ना? बहुत सारी खुशियों के पल आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे खुशियों के पल हैं जो कि आप अभी तक ना भूली हो?
2: हाँ, खुशियों के तो बहुत पल आएंगे। मेरी सिस्टर हैंगी जूनियर, उनके बर्थडे पे ना हमने कुछ छोटी सी पार्टी प्लान करी थी। हमने अपने फादर को भी नहीं बताया था कि हम पार्टी प्लान करें, क्योंकि वो बाहर थे। फिर मैंने इसके बर्थडे की पार्टी जो थी वो इसके फ्रेंड को मैंने बुलाया, तो मैंने इसको बताया नहीं था कि मैं तेरा बर्थडे प्लान कर रही हूँ। तो फिर मैंने नाइट में 12 बजे इसको मैंने सरप्राइज दिया, और इसकी कजन सिस्टर को और इसके फ्रेंड्स को बुलाया था, और फिर मैंने इसे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे फादर भी नाइट में ही आ गए थे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी अच्छा आपने सरप्राइज दिया अपनी छोटी बहन को और आप जैसी बड़ी बहन को सैल्यूट। और आपकी खुशियाँ और दोगुनी हो गई होंगी जब आपके पापा भी आ गए होंगे उसी रात में, है ना?
2: जी, हमारी फैमिली और हैप्पीनेस में फील होगी, क्योंकि फादर पूरी फैमिली हमारी पूरी हो गई थी, बस फादर की कमी थी वो भी पूरी हो गई।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये दुआ करती हैं कि जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सारे लोगों की जो भी खुशियों की कमी है वो सारी कमियां पूरी हों और जो भी घटनाएं हों वो अच्छी घटनाएं हों, है ना?
2: जी।
1: तक्षिला खान, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
2: शान की कसम मूवी का मेरे दिल पर मेरे मिसा मेरा दिल नहीं लगता।
1: ठीक है, आप सुनिए अपने रेडियो सेट पर ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम सुनील कुमार कर से बात कर रहे हैं, कस्बा कुलैया तहसील महाबगंज जिला बरेली से। मैम
0: कैसे हैं सुनील कुमार आप?
1: हम बहुत बढ़िया हैं मैम, आप कैसी हैं?
0: सब बढ़िया है, अल्लाह का करम है। आज सुनील कुमार, अपनी लाइफ की कोई घटना ऐसी बताइए जो आप कभी भी नहीं भूल पाए हों।
1: अरे मैम, ये घटना तो हमारे साथ एक ऐसी हुई है जो हम कभी नहीं भूल पाते हैं और ना कभी भूल पाएंगे।
0: क्या घटना हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
1: मैम हमारे साथ एक हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया वो हादसा। मैम हम कभी नहीं भूल
0: अरे
1: पाएंगे, इसलिए साथ आते हैं मैम कि कभी कोई निकले बाहर या बाइक से, किसी पैदल या साइकिल से, तो
0: जी
1: अच्छे से निकले, सामान निकले, जो थोड़ी बहुत देर हो जाए आराम से निकले। मैम हम सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ है वैसे किसी के साथ ना हो। मैम
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी घटना ने तो हमारा दिल झकझोर दिया और हमें दुख हुआ कि हमारे इतने अच्छे श्रोता के साथ ऐसा हुआ। और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है आपने सारे श्रोताओं को कि जब भी निकलें बाहर सेफ्टी के साथ निकलें, जल्दबाजी ना करें, हेलमेट लगाएं और जहां रेड लाइट हो वहां रुकें, और जहां देखें रश है या तेज वाहन चल रहे हैं वहां अपनी स्पीड को कंट्रोल में करके चलाएं, है ना
1: जी मैम, हम
0: जी।
1: यही चाहते हैं मैम क्योंकि हमारे साथ में भी ऐसा ना हो कि हमारे किसी और के साथ हो। हमारे सब लोग भाई बहन सब लोग हमारी हैं, कोई
0: जी
1: किसी का घर नहीं है, सब अपने ही हैं।
0: जी जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि आपने ये मैसेज दिया कि जो आपके साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, और हम भी यही चाहेंगे कि कोई भी दुखद घटना किसी के साथ ना हो। चलिए सुनील कुमार जी, आपने कॉल की और इतनी अच्छा मैसेज दिया हमारे श्रोताओं का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बताइए आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनने पसंद करेंगे?
1: मोरा बुद्धि का कोई सॉन्ग सुना दीजिए।
0: लीजिए आप सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में बहुत ढेर सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आए हुए हैं। जिन श्रोताओं ने कॉल पर बात नहीं की थी, उन्होंने कमेंट्स बॉक्स में बात की है अपने दिल की और बताया है कि उनकी जिंदगी में क्या घटना ऐसी हुई जो वो भूल नहीं पाते हैं। ये हमारे पास पहला कमेंट आया है तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से। भेजने वाले हैं शाहरुख खान, अरहम बाबू और किशवा नूर। ये लिखते हैं, जी मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई, एक असिस्टेंस के हादसे में मेरे वालिद की डेथ हो गई और सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई और वो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं अपने पिताजी की कमी महसूस तो करता हूँ लेकिन पूरी नहीं कर पाता। सो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने कर्तव्य निभा रहा हूँ। वाकई इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हादसा हुआ और ये जो माँ बाप के जाने का गम दुख होता है ना, ये बच्चे चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाए कभी भुला नहीं पाते, ऐसा मेरा भी तजुर्बा है। अगला ये कमेंट हमारे पास आया है सादुल शहर राजस्थान से, रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। ये लिखते हैं, एक बार एक मुसाफिर मिला मार्केट में रात्रि 10 बजे। उसने मेरे से हेल्प मांगी कि मैं एक मुसाफिर हूँ, कहीं जाना था लेकिन मेरी बस निकल चुकी है, रात बसेरा यहीं निकालना होगा, कोई धर्मशाला या होटल हो तो मेरी मदद कीजिए ताकि मैं रात काट सकूँ और सुबह चला जाऊँ। मैंने उनको धर्मशाला तक पहुँचा दिया जहाँ रात्रि को रुकने की व्यवस्था भी थी। धर्मशाला का मैनेजर मेरी जानकारी में था, उसने गेट खोला और उन्हें वहाँ पर रोक लिया। सुबह बैंक मैनेजर ने मेरे पास संदेश भेजा कि आप धर्मशाला पहुंचे। मैं धर्मशाला गया तो वहां काफी लोगों की भीड़ जमा थी। जाते ही लोगों ने पूछा कि रात्रि को जो आपने यहां पर मुसाफिर को लेकर आए थे, उन्होंने धर्मशाला में काफी लोगों का सामान चोरी करके फरार हो गए हैं, वो कौन है और कहां से आए हैं उन्हें लेकर आओ। उसे टाइम मेरा तो होश उड़ गए, मैं तो उनको जानता भी नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और सिर्फ वो

मुसाफिर है मैं इतना ही जानता था। रात को फिर रहा था और मैंने इस हालत पर उन्हें रुकने को कह दिया था और ये बात इन्हें आखिर तक यानी कि आज तक इनको चुभती है, याद आता है तो इन्हें दुख होता है और इन्होंने जो जिस किसी की भी हेल्प की थी वो इन्हें बहुत ही मुश्किल कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वाकई बहुत सारे लोग ऐसे धोखेबाज होते हैं जिनकी वजह से जो सही लोग होते हैं उन तक सही हेल्प नहीं पहुंच पाती है। आगे ये वही बात लिखते हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान में रहते हैं, एक काचर का बीज सवा मन दूध में डाल दें तो वो फट जाता है, यानी दूध में खटाई डालने से दूध फट जाता है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे समाज को बदनाम कर देते हैं। सही बात कही इन्होंने। अगला आरजे राहुल पाल लिखते हैं, ये गोपी खिरिया तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से हैं। राहुल पाल, हलीमोहन, अंजना, ज्योति और लक्ष्य बघेल और इनके परिवार ये लिखते हैं कि बात उन दिनों की है जब हम आज से लगभग 20 साल पहले कक्षा 8 में पढ़ा करते थे। हमारा स्कूल हमारे गांव के 8 किलोमीटर दूर पड़ता था, इसलिए हम स्कूल साइकिल से जाया करते थे। स्कूल से लौटते समय हम साइकिल चलाते हुए अपने से आगे चल रहे दोस्त का पीछा कर रहे थे और साइकिल को बड़ी तेजी से निकाल रहे थे। अचानक साइकिल की चेन उतरी और हमारा संतुलन बिगड़ गया और हम रोड के किनारे बह रही नहर में जा गिरे। गनीमत ये रही कि उस दिन हमारे दादाजी हमारे साथ पीछे पीछे साइकिल से आ रहे थे तो उन्होंने मेरी साइकिल को उस नहर से मुझे और मेरी साइकिल को उस नहर से बाहर निकाला, मुझे बहुत डांटा और उस दिन मैं बहुत घबरा गया था। वाकई दोस्तों ये घबराने वाली बात है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर शरारतों में एक ऐसे हादसे का शिकार हो जाते हैं जिसमें उनकी जान भी चली जाती है और इसलिए ये दुर्घटना वो कभी नहीं भूल सकते और ये जो है उन्हें याद रहती है। अगली हमारे पास लाल मोहम्मद अंसारी लिखते हैं कि कोई भी दुर्घटना है इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इसी तरह से इनकी भी लाइफ में एक घटना है कि 22 दिसंबर 2023 को दोपहर के 2:45 का समय था, जुमे का दिन, कभी नहीं भुलाया जा सकता। उस दिन हमारी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, वो हमें हमेशा याद रहेगा, संकट का दौर और एक फिर ज़बरदस्त झटका जिसने जख्म पर चोट का काम किया, उस दिन को भूल पाना बहुत मुश्किल है। वाकई दोस्तों किसी की अपनी कोई चीज़ खो जाए या चोरी हो जाए तो दुख तो होता ही है। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, निकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति लिखते हैं कि जब हम छोटे थे, जब मतलब ये जो थे छोटे थे तो कहाँ स्कूल जाया करते थे और इनके पास एक टीन का बैग हुआ करता था, लिखते हैं, और टीन का एक बक्सा हुआ करता था, उसमें हम सारे स्कूल की किताबें रखा करते थे। फिर एक दिन हम स्कूल से अपने घर जा रहे थे तभी एक काऊ ने हमारा अपना सींग मार के हमारा जो बक्सा था वो नाली में गिरा दिया। इस घटना को अभी तक नहीं भूल पाए हैं अनोखे लाल मौर्य, कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से। वाकई बहुत सारे हंसी की बातें भी होती हैं हमारे जीवन में जिन्हें हम नहीं भूल पाते हैं और बहुत सारी दुखद घटनाएं भी होती हैं जिन्हें हम नहीं भूल पाते हैं। बहुत अच्छा सफ़र रहा आज का, बहुत सारी घटनाएं हमारे श्रोताओं ने साझा की, जिन लोगों ने गम भरी घटनाएं साझा की उनके लिए हमारी दुआ है, बल्कि सारे दोस्तों के लिए दुआ है कि सब दोस्तों की ज़िंदगी में खुशियों भरे पल आए, खुशियों भरी घटनाएं आए। और अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां को दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब हम आपको आज की सभा और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। दोस्तों, आज शाम 5:30 कर समय रहेगा नारी संसार का। इसमें होगी चर्चा, अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। 6:00 का समय रहेगा कार्यक्रम युवाणी का। ग्राम जगत सुनना न भूलें आज शाम 6:30 से। इसमें सुनिए कृषि गोष्ठी, सब्जियों की खेती से आय दोगुनी करें। प्रतिभागी होंगे वेद प्रकाश, दानवती और अलीम जाफर। कृषि पाठशाला में आज का विषय होगा गौवंशीय पशुओं में लाम्पी स्किन रोग और खुरपका एवं मुंहपका रोग, रोकथाम एवं नियंत्रण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर गौरव कुमार शर्मा। संचालन होगा डॉक्टर रविन्द्र कुमार का। दोस्तों, आज शाम 7:31 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय रहेगा महिलाओं में बच्चेदानी की रसौली, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर विद्या सिन्हा। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00 से। दोस्तों, कल सुबह 8:15 पर सुनिए बरेली की खबरें कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। 8:45 पर सुनिए लोक धुनों पर आधारित कार्यक्रम लोक गीत। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को सुन सकेंगे आप कल सुबह 9:00 से। 9:30 पर होगा कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रतन गंगवार। आपकी पसंद का समय रहेगा कल 10:00 से फेसबुक के माध्यम से। आपके रेडियो सेट पर बिखरेंगे रंग कार्यक्रम सब रंग में कल पूर्वाहन 11:00 से। 11:15 पर सुनिए कार्यक्रम झुमका गिरा रे। आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत कल दोपहर 1:00 से। रस रंग पेश किया जाएगा कल दोपहर 2:00 से। और कल 3:30 पर सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। श्रोताओं, कल शाम 4:00 से होगी आपकी बात आकाशवाणी के साथ। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे हर रोज की तरह दोपहर 2:30 से। भजन संध्या शाम 5:05 से। शाम 5:30 का समय रहेगा नारी संसार कार्यक्रम का। इसमें आप सुनेंगे वार्ता, देश के विकास में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार होंगी मोनिका कुमारी। युवाणी हर रोज की तरह शाम 6:00 से। किसान भाइयों के कार्यक्रम का पिटारा खुलेगा शाम 6:30 से। इसमें होगी आज की बात मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर।

साथ होगी कृषक गोष्ठी। ग्राम जगत का समय रहेगा कल शाम 7 बजे से। कृषि पाठशाला का विषय रहेगा मानसून के दौरान पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले पशु जन्य रोगों का बढ़ता खतरा। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर दीक्षा पुरुषोत्तम गोरखेड़े। इनसे बात की होगी क्षमा सक्सेना ने। कल शाम 7:31 पर सुनिए कार्यक्रम अनुरोध गीत। तो श्रोताओं, ये तो था हमारी आज की सभा और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 5:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या।